मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे।

में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना साथ ही विनिर्माण नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

हमें सच्चे मन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि प्रभु के शरण में हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा मन प्रभु की साधना में लीन है। प्रभु हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हम विपदाओं के अंधकार में हैं, आप हमें इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाएं।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभी आप सोनू निगम, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर, रतन मोहन और रविंद्र जैन के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम, लीजिए सुनिए सरोजनी नायडू के विचार।
4: देश के इतिहास में भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू का नाम सदा अमर रहेगा। वह केवल एक कवित्री नहीं बल्कि स्वयं में एक संस्था थी। जो भी उनके संपर्क में आया वह उनकी प्रखर बुद्धि, मानवीय भावना और सहृदयता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। देशभक्त, राजनीतिज्ञ, सुभाषिणी, सुगृहिणी, सुषुप्त राष्ट्र की उद्बोधनी, लाखों व्यक्तियों की आदर्श, एक आदमी से अधिक हिम्मत वाली होते हुए वो सर्वांगीण नारी थी। सन 1624 में गोलमेज सभा के सिलसिले में जब वो लंदन गईं, तो भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग के बारे में उन्होंने कई सभाओं में भाषण दिया। इंग्लैंड से वो अमेरिका पहुंची, वहां जाकर उन्होंने अमेरिका की जनता को भारतीय दृष्टिकोण के उचित विवेचन से बहुत प्रभावित किया। अमेरिकनों की एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा, हम पश्चिम के किसी भी तत्व से सहानुभूति की याचना नहीं करते, हमारा पश्चिम के किसी तत्व पर विश्वास नहीं है, हमारा इंग्लैंड के सबसे अधिक उदार तत्व पर भी विश्वास नहीं है। इसका कारण सीधा और साफ है, ब्रिटिश उदारवादी, मजदूर, दलीय या कट्टरपंथी कोई भी भारत से हाथ धोना नहीं सहन कर सकता। हम याचना की झोली लिए नहीं फिरते, हम अपनी ही शक्ति से खड़े हैं। सन 1945 की बात है, उन्होंने दिल्ली के पत्रकारों को भारत छोड़ो प्रस्ताव के संबंध में भारत की स्थिति स्पष्ट की। उनका

0: हृदय सात्विक कोप से भरा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की तीव्र भर्त्सना की और कहा कि भारत ने नैतिक प्रश्नों पर अपना निर्णय किया है तथा कांग्रेस कार्य समिति अपने निश्चय पर निश्चल रहेगी, चाहे इसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। अपनी वार्ता को समाप्त करते हुए उन्होंने विनोद पूर्वक कहा, पत्रकारों, यदि मैं मर जाऊं तो तुम जनता से कहना कि श्रीमती नायडू पत्रकारों से बातें करते करते चल बसी। उनके गीतों में भारत की धरती के ही बोल थे। उनकी भावना का पश्चिम से कोई बंधन नहीं है। उनके शब्द मधुधार के समान थे जो मधु के छत्ते से धीरे धीरे प्रवाहित होती हैं। सौंदर्य के प्रति प्रेम ने ही उन्हें कवित्री तथा मानवता के उत्पीड़न के प्रति सहानुभूति ने उन्हें राजनीतिक बना दिया था। उन्होंने एक स्थान पर कहा है, अरे भाग्य, तूने मुझे कष्टों की चक्की में अनाज के दाने के समान पीस डाला है, पर देख, मैं उसे अपने आंसुओं से गीला कर और गूंद कर आशा की रोटी उन्हें आराम देने और खिलाने के लिए तैयार करूंगी, जिनके अगणित हृदयों के लिए कष्टों की झड़ी के अतिरिक्त और कोई फसल लहराती ही नहीं है।
1: अभी आप सुन रहे थे सरोजनी नायडू के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं तकनीकी सिंचाई से जल की बचत विषय पर शत्रुघ्न प्रसाद से जय कृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत।

0: किसान भाई कृषि में चाहे वो कोनो फसल हो भाई, आज बहुत सारा साधन हो, ट्यूबवेल हो, पंपिंग सेट हो, नहर हो, लेकिन फिर भी ग्रीष्म काल आवत हो जौन भूगर्भिक जल हो वो धीरे धीरे कम हो लगत हो। तो आज सिंचाई को बहुत से अपने कृषि वैज्ञानिक देश में नई नई तकनीक विकसित केले हों जोने में कम पानी से भी सिंचाई अच्छी की जा सकत है और जल संरक्षण के संदर्भ में भी बचत हो सकत है। आज तकनीकी सिंचाई से जल की बचत ये विषय पर जानकारी देवे बदे विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच में भैया शत्रुघ्न प्रसाद जी आलबट है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत हो। हम सबसे पहले तो ये जानल चाहब कि तकनीकी सिंचाई का बाय और इसे जल का बचत कैसे हुई, एक किसान भाई के थोड़ा बतावें।
1: किसान भाइयों, तकनीकी सिंचाई वो विधि है जिस विधि से सिंचाई करते समय कम पानी में अधिक फसल उत्पादन लिया जा सकता है। जैसे पेड़ पौधे एवं फसलों में प्राकृतिक रूप से जल की आवश्यक पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे उनमें कृत्रिम रूप से सिंचाई करनी होती है। कृत्रिम रूप से पेड़ पौधे एवं फसलों को पानी देने के तरीकों को कृत्रिम रूप से सिंचाई प्रणाली कहते हैं। पौधे एवं फसल की उचित एवं विकास के लिए सिंचाई करना अति आवश्यक होता है।
0: जी
1: पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी, सूखा सहन करने, भू परिष्करण क्रियाओं, पौधों के लिए स्वस्थ एवं ठंडा वातावरण एवं भूमि में नमी बनाए रखने के लिए एवं लौड़ों एवं सघनों को दृढ़ता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब सिंचाई कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः सिंचाई चार प्रकार की होती है, जिनमें मेन सिंचाई जो होती है सतही सिंचाई, अधोसतही सिंचाई, बौछारी सिंचाई, टपकेदार सिंचाई,
0: जी भैया।
1: जिसको टपकेदार जो सिंचाई है।
0: अच्छा एक मिनट हम आपकी रोकल चाहे, जैसे सिंचाई खेती में समय के हिसाब से सिंचाई का हो,

0: मिट्टी के हिसाब से सिंचाई कैसे की जाए, जैसे कौन मिट्टी है जो ज्यादा पानी सोखता है, कौन कम है, वृक्ष और बागवानी है तो उनमें कौन तरीके से सिंचाई दल जाए, तो वो हिसाब से आप बताओ कौन कौन सिंचाई प्रणाली हो और का उकर उपयोग हो।
1: जो सतही सिंचाई है,
0: हाँ
1: सतही सिंचाई 7 प्रकार की होती है।
0: जी
1: इसमें बाढ़ सिंचाई आती है, कूड़
0: हाँ
1: सिंचाई आती है, पट्टियों की सिंचाई आती है, सर्प विधि आती है, थाल विधि आती
0: जी
1: है,
0: जी मतलब थाल वाले में थाला बना के केवल
1: जी
0: थाला
1: जी
0: में
1: जी
0: पानी भेजल जाए।
1: समोच्च विधि भी आती है
0: हाँ
1: और झटकेदार विधि भी आती है।
0: हाँ
1: तो भारत में मुख्यतः कृत्रिम रूप से फसलों एवं पेड़ पौधों के सिंचाई के लिए
0: हाँ
1: सतही, अधोसतही, बौछारी एवं टपकेदार सिंचाई की विधि उपयोग में लाई जाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: जैसे सतही सिंचाई जो है, इसमें मुख्य सिंचाई जो है नाली से खेत में पानी को
0: हाँ
1: खोल दिया जाता
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: पौधे तक पानी पहुंच जाता है। इस विधि से यह विशेषता है कि इसमें पानी भूमि की सतह पर प्रयोग किया जाता है। यह विधि सामान्य विधि है। फसल उगाने के लिए अधिकतर इस विधि का प्रयोग किसान भाई करते हैं,
0: हाँ
1: जिससे अधिक उत्पादन उनको प्राप्त होता है। इनमें सतही सिंचाई विधि का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। यह भी इसमें ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि जिस पानी से बहरे होते हुए जाती हैं सिंचाई करने के लिए, उस बहरों को कटाव से रोकना पड़ता है, नहीं तो पानी का आच्छादन गलत जगह हो जाएगा। इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे इसमें इसी सिंचाई में दूसरी सिंचाई जो है बाढ़ विधि, इसको फ्लोडिंग विधि कहते हैं। ये इस विधि में बहुत अधिक पानी लगता है,
0: जी जी
1: ये ऊंचे खाले नीचे में भर जाता है,
0: और खेत का लेवल सही ना रहता
1: सही
0: जी।
1: नहीं रहता
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: इसमें मेड़बंदी की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: बिल्कुल हाँ
1: इसी में एक गहरी कूड़ सिंचाई है।
0: हाँ हाँ
1: मेड़ों या मेड़ों के ऊपर उगाई जाने वाली फसलों में जैसे ज्वार, मक्का, आलू, गाला, कपास, तंबाकू आदि में मुख्य सिंचाई नाली से कूड़ों में पानी खोल दिया जाता है। एक कूड़ से दूसरे कूड़ में होते हुए खेतों में पानी पहुंच जाता है। इसी में सीमांत एवं पट्टियों विधि की एक सिंचाई आती है। इस विधि में खेत को लंबी व चौड़ी पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। पट्टियों की लंबाई लमसम 250 मीटर, चौड़ी कम से कम 10 से 12 मीटर तक उपयुक्त होनी चाहिए,
0: जी जी
1: जिससे जो है प्रत्येक पट्टियों में पानी बहने दिया जाता है। या अधिक सहन व बलुई मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। इस विधि को अपनाने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है,
0: जी
1: इसकी सिंचाई दक्षता भी कम होती है। इसी में चौथी विधि जो है सर्वकारमंड विधि बताया था। इस विधि में सिंचाई हेठ गनाए गए कूड़ चित्र के अनुसार लंबाई में सर्प के आधार जो चलने वाली दिशा होती है, उस आकार में पानी को कूड़ से छोड़ दिया जाता है
0: जी
1: और
0: जी
1: उसके आसपास के रास्तों से कट के खेत की सिंचाई सघनता और सरलता से
0: जी
1: कर ली
0: जी
1: जाती है।
0: हाँ हाँ
1: अब आपने पूछा था कि जो है वृक्षों की सिंचाई,
0: हाँ हाँ बागवानी खास तौर से
1: बागवानी
0: बाग हाँ
1: खासकर,
0: बगीचा
1: तो
0: लगोले
1: ये
0: बागवानी
1: काफी महत्वपूर्ण विषय है
0: जी जी
1: कि हमारे किसान भाई समरसेबुल का पानी खोल दिए
0: हाँ
1: और
0: भैया
1: पूरा
0: बाग
1: बाग भर
0: बाग
1: गया,
0: डूबत बा पानी का भी दुरुपयोग होता है
1: दुरुपयोग
0: आज
1: हो
0: भैया।
1: गया।
0: सबसे बड़ी समस्या पानी के संरक्षण का भी हो।
1: जी, तो इसके लिए जो थाल विधि है, इस विधि में बाग बगीचों में आने वाले फलदार वृक्षों एवं चारागाहों की सिंचाई को अपनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। यह विधि अधिक रेतीली भूमि तथा कार्बनिक भूमियों के अनुकूल नहीं होती है और इसको थाल बना के जब बाग बगीचों की चारागाहों की सिंचाई की जाती है तो उससे अतिरिक्त पानी बर्बाद नहीं होता है
0: जी जी
1: और वहाँ का वाटर लेवल काफी दिन तक नमी बनाए रखता है। इसी में एक कंटूर मेथड आता है जिसको कहते हैं समोच्च विधि। पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखाओं पर ढाल के विपरीत सिंचाई की नालियां बनाकर खेत को छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर
0: जी
1: इस विधि से सिंचाई की जाती है कि जिससे पानी का नुकसान ना
0: बिल्कुल
1: हो।
0: बिल्कुल
1: और इसी में एक विधि है झटकेदार सिंचाई।
0: टपक विधि का भैया स्प्रिंकलर से जो कम
1: हाँ,
0: पानी में और कोने कोने चीज में ही काम आवे।
1: तो ये जो ड्रिप सिंचाई होती है,
0: हाँ हाँ
1: यह विधि सिंचाई की नई विकसित विधि है। यह कम जल
0: हाँ
1: उपलब्ध
0: जहाँ कम
1: होने
0: पानी
1: वाले
0: हो जी जी
1: क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है।
0: कौने फसल में या कौने सब्जी में कहाँ एकर उपयोग ज्यादा सही हो।
1: या इसकी जो खोज थी
0: जी
1: ये सन 1940 में इजराइल के इंजीनियर सिमका ब्लास द्वारा किया गया था

0: और ये 1964 में पेटेंट इसको किया गया। और ये सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण
1: और
0: है।
1: कृषि तकनीक में भाई इजराइल बहुत आगे हो।
0: हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे सिंचाई करने से काफी जल का बचाव होता
1: जी
0: है।
1: जी
0: ये सिंचाई भूमि के भीतर प्लास्टिक का जाली युक्त पाइप हल स्तर के नीचे, जो जुताई का हमारा हल का स्तर होता
1: हाँ,
0: है
1: जितने गहराई तक वो
0: उसके
1: जाते हैं जी।
0: नीचे जो है इसको बिछा देते हैं और पौधों के जड़ क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाता है
1: जी जी
0: और खेतों की सिंचाई हो जाती है। इसी में संरक्षण सिंचाई आती है। इस विधि में अस्थाई विकास के अंतर्गत अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अधिक कृषि उत्पादन के लिए संरक्षण सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। संरक्षण सिंचाई से सिंचित भूमियों की उपयुक्त मात्रा में सिंचाई जल का उपयोग करते हुए तथा भूमि की ऊपरी सतह का सदुपयोग करते हुए फसलों से अधिक उपज प्राप्त किया जा सकता है।
1: भैया शत्रुघ्न प्रसाद जी, समय ये विषय जोन बाय बहुत लंबा हो, तो हम आपसे चाहब कि किसान भाई के जोन मोटी मोटी बात हो, जोन महत्वपूर्ण हो, वो के बता दें।
0: किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम जल कितना संरक्षण करें, वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए, हमारे भविष्य के जीवन के लिए कितना बेहतर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने पूरे भारत में और अपने खासकर उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र के बगल में ही जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय होता है। वहां भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा एक योजना आरंभ की जा रही है, IWMP, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम। इसके तहत मेड़बंदी होती है। जैसे आपकी जमीन नाले के ऊपर है, आपकी जमीन नाले के नीचे है, आपकी जमीन ऊबड़ खाबड़ पे है, तो आप उस विभाग से संपर्क करके
1: बिल्कुल।
0: अपने खेतों की आवश्यकता अनुसार मेड़बंदी करा सकते हैं, जिससे बरसात का पानी खेत में और जो भी पानी एक्स्ट्रा हो वो नालों में जाके एकत्रित हो जाए, फसल लेने के साथ साथ उससे सिंचाई आप कर सकें। तो किसान भाइयों, बरसात के पहले मेड़बंदी उतनी ही जरूरी है जितना आपको खाने नहाने सब चीज के लिए, उतना ही हमारे फसल उत्पादन के लिए खेत के चारों तरफ मेड़बंदी करना, मोटी घास लगाना जिससे कटाव कम हो, जब कटाव कम होगा तो वर्षा जल का आच्छादन कम होगा, वर्षा का जल इकट्ठा होगा जिससे जो है वाटर लेवल आपके खेत का, आपके समरसेबुल का, आपके कुएं का बढ़ेगा और आपको आवश्यकता से अच्छी सिंचाई प्राप्त होगी।
1: बिल्कुल भैया, देखा शत्रुघ्न प्रसाद जी, आप तकनीकी सिंचाई से जल की बचत विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी देने से उन्हें लाभ मिली। आपके जानकारी देव दे, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे तकनीकी सिंचाई से जल की बचत विषय पर शत्रुघ्न प्रसाद से जय कृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर ओपी त्रिपाठी की वार्ता, दूषित जल से होने वाली बीमारियां।
1: अधिकांश संक्रामक रोग कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये रोगाणु शरीर में विभिन्न माध्यमों से प्रवेश करते हैं। कुछ रोगाणु जल में व्याप्त रहते हैं तथा जल एवं भोज्य पदार्थों को प्रदूषित कर देते हैं। जब हम दूषित पेयजल एवं भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रोगाणुओं की संख्या शरीर में लगातार बढ़ती रहती है तथा मनुष्य रोगी हो जाता है तथा संबंधित रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दूषित एवं संक्रमित जल हमारे आंत में पहुंचकर श्लेष्मा झिल्लियों को संक्रमित कर देती है। इस प्रकार दूषित पेयजल से हम हैजा या कालरा, गैस्ट्रोइंट्राइटिस, टाइफाइड, पेचिस, अतिसार, फूड प्वाइजनिंग एवं पीलिया नामक रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। हैजा या कालरा एक भयंकर संक्रामक बीमारी है। यदि शीघ्र उपचार न किया जाए

0: तो 24 घंटे के अंदर ही मृत्यु हो सकती है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जहाँ स्वच्छता एवं स्वच्छ जल का उचित प्रबंध नहीं होता, वहाँ यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। तीर्थ स्थानों में जहाँ पर स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था नहीं है अथवा तीर्थयात्री इधर उधर खुले स्थानों में शौच करते हैं, वहाँ पर यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। कालरा विब्रियो कालरी नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है। मक्खियाँ उल्टी एवं मल में बैठकर असंख्य जीवाणु अपने पैरों में चिपकाकर भोजन तक पहुँचा देते हैं। इस प्रकार दूषित भोजन लेने के कुछ घंटे बाद ही रोगी के पेट में तेज़ी से ऐंठन एवं मरोड़ के साथ पेट दर्द होने लगता है। उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं तथा पतले चावल के माड़ जैसा दस्त भी शुरू हो जाता है। शरीर से प्रचुर मात्रा में पानी एवं खनिज लवण के निकल जाने से प्यास खूब लगती है। शरीर में दर्द होता है, आंखें धंस जाती है, रक्तचाप कम होने लगता है, नाड़ी की गति धीमी पड़ जाती है एवं गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। हैजे से बचाव के लिए खान पान की चीज़ें हमेशा ढक कर रखना चाहिए। मक्खियों से बचें। रोगी के मल मूत्र उल्टी को मिट्टी के बर्तन में ढककर ज़मीन में गाड़ दें। पानी उबालकर ताज़ा खाना खाएं एवं गर्म खाएं। बाज़ार की खुली चीज़ें एकदम न खाएं। टाइफाइड या मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणुओं के मनुष्य की आंत में पहुंचकर उसे रोगी बना देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में रोगी के सिर में तेज दर्द होता है, बेचैनी होती है, शरीर का ताप तेज़ी से बढ़ने लगता है, शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के दाने निकल आते हैं, इसे मोती झरा भी कहते हैं, आंतों में सूजन एवं घाव हो जाते हैं। अच्छे चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा आंत में छेद हो जाने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। टाइफाइड से बचाव के लिए साफ़ सफाई, ताज़ा एवं गर्म खाना, साफ क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। उल्टी मलमूत्र एवं गंदी वस्तुओं को घर से दूर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। फूड पॉइजनिंग बचा हुआ बासी भोजन अधिक समय तक रखा रहने से जीवाणुओं द्वारा विषाक्त हो जाता है। विषाक्त भोजन के सेवन से जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त लग जाना, पेट में दर्द एवं ऐंठन होना, बुखार एवं कमजोरी लगना, यही इसके लक्षण हैं। पीलिया भी अशुद्ध जल या प्रदूषित भोजन करने से होता है। इस प्रकार प्रदूषित जल द्वारा फैलने वाली बीमारियों की जानकारी होने पर तथा शुद्ध जल का प्रयोग करके बीमारियों से बचा जा सकता है तथा बीमार व्यक्ति अच्छे चिकित्सक से इलाज कराकर जल्द ही ठीक हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओपी त्रिपाठी की वार्ता, दूषित जल से होने वाली बीमारियां। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 9:30 पर आप सुनेंगे विज्ञान भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7:00 सुनिएगा श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और दिन में 12:15 पर भास्कर दास का बांसुरी वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा। प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर शीला धर के स्वर में गजल प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर लोकमाद्री कार्यक्रम में कलाकार होंगे रश्मि टंडन और दुखीराम और दोपहर 2:30 पर लोकगीत में मुकेश बेगाना शशि

अला जैन और मुंशी लाल सोनकर और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनिएगा। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश सुनिएगा प्रस्तुति मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सूरज कुशवाहा। शाम 5:15 पर युवाश्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मानिक चंद पटेल और साथियों के स्वर में लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत आंखों की सामयिक बीमारियां और उसका निदान विषय पर डॉक्टर शिखा से ब्रजेंद्र नारायण की बातचीत सुनिएगा। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में प्रवीण शेखर की वार्ता सुनिएगा डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियां। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत सुनिएगा 9:00। सुबह 10:30 पर, दिन में 11:30 पर और रात 8:00 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत्प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो

0: इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरुबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरुबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरुबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

विमान से उतरकर श्रीराम ने गुरु, अन्य मुनियों तथा पूजनीय व्यक्तियों के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीष पाया। भरत आकर अग्रज के चरणों से लग गए। दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। श्रीराम भरत से बार बार कुशल क्षेम पूछते हैं, किंतु भरत की वाणी जैसे मौन हो गई है। सभी भाई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। उधर से माताएं इस प्रकार दौड़ी आ रही हैं, जैसे नवजात बछड़ों से दिन भर की बिछड़ी गऊएं हुंकारती, थानों से दूध की बूंदें टपकाती दौड़ती चली आती हैं। नगर निवासियों की मिलने की उत्कंठा देख श्रीराम ने एक ही समय में अनेक शरीर धारण कर सबको कृत कृत्य कर दिया।

अभी आप श्री राम चरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए सीमा फिल्म में मन्नडे को, संगीत शंकर जयकिशन का और रचना है शैलेंद्र की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए लगान फिल्म में उदित नारायण और लता मंगेशकर को संगीत, AR रहमान का रचना है जावेद अख्तर की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लगान फिल्म का ये भजन उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में। और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष

0: 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
1: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया।

0: योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
1: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके चार पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। इस बार सिर्फ घरों की गिनती ही नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी जनगणना का हिस्सा बन रही है। अभियान के पहले ही दिन 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। गोरखपुर में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं जिनमें 11,000 से अधिक प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
2: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज, यानी कि अराउंड 600-800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है। और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के 1 घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल बांदा लगातार 6ठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी और उरई में 45.4 डिग्री सेल्सियस और आगरा में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।

0: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
1: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: देश में कल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं भास्कर दास का बांसुरी वादन, राग है अहिर भैरव।

अभी आप सुन रहे थे भास्कर दास का बांसुरी वादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्रा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे

0: मापदंड राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्र

0: और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है,

0: है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including ministries of railways, home affairs, health and family welfare, and department of higher education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington

0: bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले चार रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वाम मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकरीरशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रोजगार मेला वजीर आजम मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरीरनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकरीरी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे, जिनमें रेलवेज, दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी, जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। ये फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं 27.60% का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने चार रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वॉशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तावुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गौर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफर करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज, तिजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफद को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानसीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इयादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क्याम अमन मिशन में खिदमत अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क्याम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जुनूबी सूडान में अक्वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमत अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कोंगो में अक्वामे मुत्तहदा के इस्तेकाम मिशन के तहत उनकी खिदमत पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अलाक्वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटों की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में ख़रीदारी ना करें और ईंधन की खरीदारी अपनी असल ज़रूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मजीद कहा

0: जून को होंगे। इस खबर को रोज़नामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज़्यादा तकरारनामे तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाज़त दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोज़ा दौरे पर कोलकाता पहुँच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वामे मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
6: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
5: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
6: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
7: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है स्क्रीन टाइम से बढ़ता तनाव। स्क्रीन टाइम, जी हाँ, आज मोबाइल ने हम सबके जीवन में खुशियां कम कर दी हैं। कहने का मतलब, ना तो हम अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, ना एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। अगर बैठ भी रहे हैं तो सब अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या युवा, सब अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। हम बार बार फ़ोन चेक करने, फ़ोन से दूर होने पर बेचैनी और काम के बीच में भी फोन देखते रहने की आदत आपको बीमार बना सकती है। अनिद्रा से लेकर याददाश्त को कमज़ोर बना रही है। श्रोताओं, मोबाइल की बीमारी किसी ड्रग से कम नहीं है। आभासी दुनिया में भटकने की यह आदत डिजिटल डिमेंशिया से लेकर टेक्निक जैसी गंभीर बीमारियों की नींव को तैयार कर रही है। भारत में 1.25 अरब स्मार्टफोन और 95 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यूजर्स प्रतिदिन औसतन 5 घंटे इंटरनेट, मीडिया, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग पर खर्च कर देते हैं। इसके अत्यधिक इस्तेमाल से न केवल दिमाग की क्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि नींद भी बाधित होने और पाचन समस्याएँ देखने को मिलती हैं। लगातार ब्लू लाइट के सामने रहने से रात की नींद भी बाधित हो रही है। आप रात में देर रात तक फ़ोन चला रहे हैं और सुबह उठने में बहुत सारा टाइम ले रहे हैं। श्रोताओं, लौटेंगे अपने कार्यक्रम में, सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम में स्क्रीन टाइम से बढ़ता तनाव। स्क्रीन आमतौर पर स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, टेलीविज़न और डिजिटल साइनेज में पाई जाती है। स्क्रीन स्पर्श संवेदनशील हो सकती है, जिससे उपयोगकर्ता इशारों या टैप करके प्रदर्शित सामग्री के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज के युग में इसका उपयोग मनोरंजन, जानकारी, उत्पादकता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तनाव, चिड़चिड़ापन और आंखों से कमज़ोर मानसिक रोगी भी बना दिया है। आज बच्चे तो बस कोई जानकारी चाहिए तुरंत फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे क्या हम भी करते हैं? छोटे बच्चे बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति फ़ोन से दूर रहना ही नहीं चाहता। इसी वजह से आज आपसी मेलजोल भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। आपसी रिश्तों में भी अब वो मिठास नहीं रही जो बिना फ़ोन वाले ज़माने में हुआ करती थी। स्क्रीन टाइम का बढ़ना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई समस्याओं की जड़ है। लगातार स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलीपन की समस्या, स्क्रीन के सामने घंटों एक स्थिति में बैठे रहने से शारीरिक गतिविधि रुक जाती है, जिससे कैलोरी बर्न नहीं होती और मोटापा भी बढ़ता है। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या होना आम बात है। बच्चों और युवाओं में आउटडोर खेलों की कमी हो जाती है, जिससे उनकी मांसपेशियों और हड्डियों का विकास रुक जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि फ़ोन से दूरी बनाने की पूरी कोशिश करें। अपने बच्चों को बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं।

श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में हम जितने कनेक्टेड होते जा रहे हैं, असल ज़िंदगी में खुद से और अपनों से उतने ही डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। स्क्रीन पर घंटों बिताना शांति नहीं, केवल आंखों का तनाव और मन का भटकाव बढ़ाता है। फ़ोन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, लेकिन उसे अपने जीवन का मालिक ना बनने दें। श्रोताओं, और अब हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है और उसके बाद आपको आपके भेजे हुए सुविचार पढ़कर सुना रहे हैं। नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। लिखती हैं, सुखी होने के बहुत रास्ते हैं, पर औरों से ज़्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। मन का बोझ हल्का करने के लिए दोस्त से बेहतर कोई दवा नहीं है। बहुत अच्छा सुविचार नीरा त्रिपाठी जी ने हमें भेजा है। एडवोकेट वारिस अली जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं, आवाज़ की दुनिया के प्यारे दोस्त को सलाम, आपको भी हमारा सलाम। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। लिखते हैं, सोच समझ कर बोलें, अच्छे शब्द रिश्ते जोड़ते, गलत शब्द दिल पर घाव करते हैं। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से इन्होंने ये सुविचार हमें भेजा है। उत्तम सिंह जंगेल का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए हमेशा सीखते और सिखाते रहें। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने प्यारे प्यारे सुविचार भेजे।

0: श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। और आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पोस्ट के कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपने सुविचार, आपका नाम शामिल होगा 8:45 पर कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: फसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए ओमकारा फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खां की आवाज में। संगीत दिया है विशाल शेखर ने, रचना है गुलजार की।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लीजिए अब सुनिए मुद्दत फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। संगीत दिया है बप्पी लहरी ने और रचना है SH बिहारी की।

श्रोताओं, भी आपने सुना मुद्दत फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 48 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
2: इटावा के बुद्धा पार्क में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 14 करोड़ लागत से होने वाले 11 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सरकार के द्वारा महिलाओं को हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। इससे महिलाएं समाज में अपना हक प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा मंत्री व जनपद इटावा के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संसद में नारी शक्ति से जुड़े विधेयकों के विरोध को लेकर कांग्रेस सपा पर तीखा हमला बोला। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि 16 व 17 अप्रैल को संसद में पेश महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुँचाई है। कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है, इसे साबित किया है जसवंत नगर की प्रख्या भदौरिया ने। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर प्रख्या ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रख्या भदौरिया ने 600 में से 582 अंक प्राप्त कर 97% के साथ यूपी टॉप 5 में जगह बनाई। प्रख्या ने बताया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके IPS बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इटावा पुलिस लाइन ग्राउंड में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि DIG हरीश चंद्र ने 483 महिला आरक्षी रिक्रूट की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से DGP और मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुना गया। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने महिला आरक्षियों की लगन और ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए बधाई दी। DIG ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया और ईमानदारी कार्यकुशलता के साथ ड्यूटी करने का मंत्र दिया। इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 1,05,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि जिले में 9,849 स्वयं सहायता समूह एक्टिव हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंचनद ब्रांड की स्थापना की गई है। इसके तहत 18 सरस शॉप और 4 कैंटीन खोली गई है जिन्हें समूह की महिलाएं ही चला रही है। पंचनद ब्रांड के अचार, साबुन, फिनाइल, मसाले का उत्पादन हो रहा है। इटावा के विकास भवन में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह और बड़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। विधायक ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि 1,286 शिक्षा मित्रों के खाते में बढ़ा हुआ मानदेय भेज दिया गया है। कार्यक्रम में 10 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक भी दिए गए। इटावा में यमुना की सफाई पर DFO विकास नायक ने सख्त रुख दिखाया है। जिला गंगा समिति की बैठक में उन्होंने STP चालू न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि 8-9 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, गंदा पानी सीधे यमुना में बह रहा है। उन्होंने आउटलेट का सैंपल जांचने और यमुना के किनारे सफाई के निर्देश दिए। वृक्षारोपण में इमली के ज्यादा पौधे लगाने और ट्री गार्ड से सुरक्षा करने को कहा। भरतना में सभी MRF सेंटर चालू कराने के आदेश भी दिए हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के ऊर्जा बचत अपील को समर्थन दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से कहा कि कार की जगह बाइक, ई रिक्शा या साइकिल से कचहरी आए। दूर से आने वाले वकील कारपूल बनाकर चले। DBA अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सभी वकील अब ऊर्जा बचत से देश की प्रगति में योगदान देंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का समर्थन करते हुए समस्त वकील जितना अधिक से अधिक डीजल पेट्रोल बचाकर राज्य क्षेत्र में अपना योगदान दें। हम सब वकील अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल की बचत करेंगे। जो लोग कार से आते हैं वो लोग कारपूल बनाकर चले अथवा

0: इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें, जितना हो सके ऊर्जा को बचाने का प्रयास करें।
1: इटावा में राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेरणा सभागार में 102 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया और 10 को बढ़े हुए मानदेय के चेक दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। राज्य मंत्री ने सीएम योगी को बधाई दी। लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इटावा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 206 केसों में बरामद 5,774 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने कानपुर देहात के इंसिनेटर प्लांट में वीडियोग्राफी के साथ पूरे मादक पदार्थ जलाए।
2: उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद इटावा पुलिस द्वारा बड़ी एवं उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कुल 206 अभियोगों में बरामद लगभग 5,775 किलोग्राम मादक पदार्थों का नियमानुसार विनष्टीकरण कराया गया। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में अवैध गांजा, डोडा, स्मैक, चरस एवं अफीम तथा अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं।
1: इंसानों के साथ अब जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बब्बर शेरों के नाइट सेल में खस की चटाई और डेजर्ट कूलर लगे हैं। ब्रीडिंग सेंटर में शेरनी और सांपों के लिए एयर कंडीशनर चल रहे हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि क्रॉल और सफारी क्षेत्र में फॉगर सावर से तापमान कम किया जा रहा है।
3: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं। बाहर जो क्रॉल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं, तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
1: गर्मी को देखते हुए सफारी का समय भी बदला गया है। सुबह 6:30 बजे से पर्यटकों के लिए सफारी खुल रही है ताकि दोपहर की धूप से बचा जा सके।
4: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
5: जनपद हमीरपुर में पिछले 3-4 दिनों में गर्मी ने 6 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 मई को 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही उल्टी दस्त डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेज गर्मी के कारण सड़कों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के वक्त बाहर न निकलें, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना ताजा भोजन ही करें। सत्तू, बेल का शरबत, आम का पना, नारियल पानी और फलों का जूस आदि का सेवन अधिक करें। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। जनपद हमीरपुर के सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि गोल्डन मोडर्नाइजेशन स्कीम को आकर्षक बनाया जाए, घरों में रखी पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल कर नई ज्वेलरी बनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुलियन व बार की खरीद को कुछ समय के लिए टाला जाए। व्यापारियों ने अपने इस सुझाव से संबंधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को फिर से पोस्टपेड करने के आदेश का जनपद हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया है। इस फैसले से उपभोक्ता खुश हैं, क्योंकि अब आए दिन बिजली कटने की समस्या से उपभोक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। अधीक्षण अभियंता ज्ञानचंद यादव कहते हैं कि सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड करने का सरकार ने निर्णय लिया है। करीब एक सप्ताह में ही सभी मीटरों को पोस्टपेड में बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर हर माह का बिल भेज दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका भी मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है वह मीटर अकाउंट में अपना नंबर जरूर पंजीकृत करा लें। जनपद हमीरपुर के संचालित 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नौनिहालों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पका हुआ ताजा व पौष्टिक आहार परोसने का सरकार ने निर्णय किया है, जिससे अब केंद्रों में सूखा पुष्टाहार वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि नौनिहालों व प्रसूताओं को आटे बेसन का हलवा, बर्फी तथा स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई जाएगी। 6 माह से 3 माह के सामान्य बच्चों को शिशु अमृत व शिशु आहार के तहत आटा बेसन का मीठा हलवा और 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों को बाल पुष्टकर के रूप में आटा बेसन की मीठी बर्फी और नमकीन दलिया व मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहत में सुधार की ओर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे राशन की कालाबाजारी आदि में भी रोक लगेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सभी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को ताजा व पौष्टिक पोषाहार खिलाया जाएगा। अब सूखा दाल, दलिया, पंजीरी, रिफाइंड आदि का वितरण नहीं होगा। इस माह सभी ब्लॉकों में नेफेड द्वारा राशन सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सप्ताह में एक दिन शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चे श्रमदान करते हुए दिखाई दें तो इसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत न किया जाए।

0: इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाएगा, उस दिन सभी शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित होगी। अभियान के तहत जो स्कूल स्वच्छ और सुंदर होंगे उन स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

0: कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: शुरू है बनामे खुदाए ताला के जो मेहरबा है बहुत रहम वाला। सामीन बज़्म अदब रामपुर रेडियो मरकज से आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबाब अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम सुबह कबूल करें सामीन। उर्दू जुबान जहां मोहब्बत तहजीब अखलाक और शीरीनी का दर्ज देती है, वहीं साथ ही उर्दू अदब हमें यकजहती और आपसी मोहब्बत भाईचारे का ऐसा सबक पढ़ाता है कि जो दिलों में घर कर जाता है। हम मुआहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। ये और ऐसे ही बहुत से दूसरे शेर कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। चंद्र प्रकाश जौहर की एक नज्म मजहब का इख्तलाफ मिटाने की बात कर उसका ये शेर कि जौहर मिटा के मजहब व मिल्लत का इख्तलाफ, जौहर मिटा के मजहब व मिल्लत का इख्तलाफ, नफरत की आग दिल से बुझाने की बात कर। इस जैसे बहुत से अनगिनत अशार नज़्में और गज़लें कौमी यकजहती की एक ऐसी सबक आमोज शायरी है जो उर्दू जुबान व अदब को तमाम दूसरे लिटरेचर्स में मुमताज और सरबुलंद रखती है। जी हाँ समीन अदब, आज इसी सिलसिले में हमने जिस तकरीर का इंतखाब किया है उसका मौजू है उर्दू अदब में कौमी यकजहती के अनासिर। और इस तकरीर को पेश करने के लिए हमारी दावत पर तशरीफ लाई हैं मोहतरमा तरन्नुम परवीन साहिबा। समात कीजिए उनसे ये तकरीर।
2: हिंदुस्तान दुनिया के ममालिक में अपनी अलग पहचान और इम्तियाजी शान रखता है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ तहजीबें और मुख्तलिफ जबानें पाई जाती हैं। हर 12 कोर्स पर जबान का लहजा बदल जाता है। यहाँ 2175 के करीब जबानें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मुश्तरका अनासिर भी हैं जिनमें एक मुश्तरका तहजीब के हुज़ू व ख़ाल नुमाया तौर पर नजर आते हैं, जिसे कसरत में वहिदत के नज़ारे यंग रंगी से ताबीर किया जाता है, जिसे गंगा जमनी तहजीब का नाम दिया जाता है। और इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान के मुश्तरका कल्चर के हज़ुओकाल में यक रंगी का सबब सबसे बड़ा मज़र उर्दू जबान और इसका अदब है। उर्दू जबान और इसके अनासिर से कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब की भरपूर आबयारी की गई है, या अगर कहा जाए कि उर्दू अदब ही ने कौमी यकजहती का तसव्वुर पेश किया है तो बेजा नहीं होगा। उर्दू जबान जब वजूद में आ रही थी, कौमी यकजहती भी उर्दू के दोष बदोश आगे बढ़ रही थी। उर्दू मकामी बाशिंदों हिंदू और मुसलमानों के मेलजोल से वजूद में आई। अरब, तुर्क, ईरानी हिंदुस्तान आए, सबकी अलग अलग जबानें अरबी, तुर्की, ईरानी, फारसी थीं। इन जबानों के अल्फाज मकामी जबानों के अल्फाज के साथ इस तरह मिल गई कि एक नई जबान जहूर में आ गई और ये जबान रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में बोली और समझी जाने लगी। मुख्तलिफ तहजीबों की अहम आहंगी का फरीजा भी अंजाम देने लगी और जो अभी तक हिंदुस्तान में किसी जबान ने अंजाम नहीं दिया था। और इस तरह पहली बार पूरा मुल्क उर्दू जबान की बदौलत हम जबानी की लज्जत से आशना हुआ। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। उर्दू जबान के तश्कीली दौर में हजरत अमीर खुसरो के नगमे दिल्ली की फिजाओं में गूंज रहे थे। अमीर खुसरो के दोहे पहलियां आज भी लबो लहजे की शक्ल में मौजूद हैं। अमीर खुसरो ने ऐसे अशार कहे जिनका एक मिसरा फारसी का और दूसरा मिसरा हिंदी या उर्दू का है। गोया अमीर खुसरो पहले शख्स हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह उर्दू जबान को अदबी हैसियत से इस्तेमाल किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की मुश्तरका कौमियत की बुनियाद रखी। इस वक्त हिंदू मुसलमान की एक दूसरे के करीब आ चुके थे और एक दूसरे के तहजीब रस्मों रिवायात से वाकिफ हो चुके थे। सुल्तान मोहम्मद ने इस रिवायत को और आगे बढ़ाया। सुल्तान मोहम्मद ने हिंदुओं को हुकूमत में शरीक किया, उनको सरकारी ओहदों पर मंसूब किया, बड़ी हद तक दो कौमों की दूरी को कम किया और कौमी यकजहती का मजाहरा किया। सुल्तान मोहम्मद ने दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी मुंतकिल किया और अपने साथ दिल्ली की पूरी आबादी को भी साथ ले गए और इस तरह शुमार और जुनूब को जोड़ दिया। इसका नतीजा

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

बहुत जरखेज़ है।

मक्ता समाप्त फरमाए, मोहब्बत से गजल कहता है बाकर, मोहब्बत से गजल

0: कमतर नहीं है, बहुत जरखेज है, बंजर नहीं है हमारा दिल, कोई पत्थर नहीं।
1: ये थे जनाब बाकर जैदी, जो अपने खूबसूरत कलाम से हम सबको महसूस कर रहे थे। और सामीन, अब घड़ी की सुइयों का इशारा हमें समझ लेना चाहिए। अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अपनी मेज़बान रबाब अंजुम को रामपुर रेडियो मरकज़ से आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दें। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अलविदा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम बता दें, कल
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं शीलाधर के स्वर में गजल।

अभी आप शीलाधर के स्वर में गजल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में

0: भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं रश्मि टंडन और दुखी राम। पहले आपको सुनवाएंगे रश्मि टंडन के स्वर में देवी गीत।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए इतिहास फिल्म का ये गीत। हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, संगीत दिया है दिलीप सेन, समीर सेन ने, और रचना है समीर की।

श्रोताओं, अभी आप दुखी राम के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए चल मेरे भाई फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण, जसविंदर नरुला, सोनू निगम और अलका याग्निक की। संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और रचना है समीर की।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए सोनू निगम, शान, बाबुल सुप्रियो और सपना अवस्थी की आवाज़ों में 10 फिल्म का ये गीत। संगीत दिया है विशालन शेखर ने, रचना है पंछी जलोनवी की।

अभी आपने सुना प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीत दिया था विजू शाह ने। लीजिए अब सुनिए शान और साथियों की आवाज़ में प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और रचना है इरशाद कामिल की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

संगीत एक ऐसी विधा जो खुद को तो सुकून देती ही है, उसे सुनने वाले को भी बहुत सुकून देती है, उसके दुख दर्द पीड़ा को कम करती है। गायक अपने सुरों के साथ, अपने सुरों के साथ सुनने वाले की भावनाओं को छेड़ता है और सुनने वाला उन सुरों के साथ न जाने कहां खोता चला जाता है। संगीत एक ऐसा वरदान है जो मानव जाति को गहरे से गहरे विक्षोभ से भी बाहर निकाल लाता है। और कुछ कलाकार होते हैं जो इसी संगीत में रम जाते हैं और उसमें रमते रमते ऐसी उपलब्धियां हासिल करते हैं कि वो सबके चहेते बन जाते हैं और हम सब उन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनकी आवाज बनाकर गाना चाहते हैं।

संगीत की दुनिया की एक ऐसी आवाज जिसने आते ही आशिकी की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसे फनकार जिनकी आवाज से दर्द और मोहब्बत का ऐसा संगम बना कि ये रातों रात करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए। एक ऐसे गायक और एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने अपने पहले ही बड़े गाने से माया नगरी में धमाल कर दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 6 मार्च सन 1986 में जन्मे एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक और संगीतकार अंकित तिवारी की। उन्हें मुख्य रूप से अपनी भावपूर्ण आवाज और सुन रहा है नातू, ये गाना फिल्म आशिकी 2 का है, इसके लिए उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली और ये गाने बेहद लोकप्रिय और रोमांटिक गानों की श्रृंखला में शामिल हुए। अंकित का जन्म अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ था, कानपुर में, और आपके जो माता पिता थे मतलब वो भी संगीत से ही जुड़े हुए थे और संगीत अंकित तिवारी को विरासत में मिला था। आपके पिताजी का अपना एक संगीत की पार्टी थी, एक बैंड था, और वो एक संगीत मंडली चलाते थे और खास तौर पर वो भक्ति गाने गाते थे। अंकित तिवारी की माताजी भी एक भक्ति संगीत की गायिका थीं और अंकित तिवारी ने शास्त्रीय संगीत सीखा था प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी से, और इसी पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत के दौरान ही पियानो बजाना और ध्रुपद गायकी का प्रशिक्षण भी लिया था। कहते हैं कि अगर किसी भी संगीत में उतरना है, सुरों की बारीकी को पकड़ना है, तो वो शास्त्रीय संगीत के बिना संभव नहीं है। इसी बारीक चीज़ को अंकित तिवारी ने भी समझी और घर से माता पिता के साथ उन्हें गाने का मौका तो मिला ही था। उनके घर के हर कोने में संगीत के सुर ही छितराए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शास्त्रीयता की बारीकियां सीखी अपने गुरुजी से और फिर ऐसा गाना माया नगरी में उन्होंने दिया जिसने धमाल मचा दिया और रातों रात अंकित तिवारी को एक स्टार बना दिया। लीजिए सुनिए, यही है वो गाना।

घर के माहौल ने अंकित के रगों में संगीत के सुर तो भर ही दिए थे। स्कूल के दौरान भी अंकित संगीत समारोहों और संगीत प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया करते थे। बाद में इनकी संगीत के प्रति दीवानगी कुछ यूं हुई कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर अंकित ज्यादातर समय रियाज ही किया करते थे। माता पिता राजेंद्र कुमार तिवारी और सुमन तिवारी ने अंकित के इस हुनर को पहचाना और अच्छे मम्मी पापा की तरह इनका सपोर्ट किया। इसी दौरान अंकित ने एक रेडियो स्टेशन पर बतौर हेड भी काम किया, लेकिन मन रमा नहीं, क्योंकि मंजिल तो कहीं और थी जो बार बार अंकित को बुला रही थी। सन 2007 की बात है, अंकित अपने भाई अंकुर तिवारी के साथ मुंबई आ गए। वहां उन्होंने शुरुआती दौर में जिंगल्स और टीवी शो के बैकग्राउंड स्कोर बनाए, उनके लिए संगीत बनाते थे और धीरे धीरे काम चलने लगा। मतलब माया नगरी उन्होंने निराश नहीं किया, कुछ न कुछ काम मिलता रहा जिसने अंकित के संघर्ष को वहां पर बना करके रखा। संघर्ष से दूर नहीं जाने दिया माया नगरी ने अंकित तिवारी को। सन 2010 में फिल्म 2 x 4 से उन्होंने बतौर संगीतकार डेब्यू किया, लेकिन इस फिल्म से अंकित को कोई खास पहचान नहीं मिली। और कहते भी हैं कि अगर एकदम से सफलता मिल जाए तो सफलता के कुछ मायने नहीं होते, सफलता तो वो है जो संघर्ष के बाद मिलती है, तब उसका स्वाद कुछ और ही होता है। 2010 की फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। 2011 में एक फिल्म आई साहब बीवी और गैंगस्टर, इसके गाने सुन ले जरा से उन्होंने अपने गायन करियर की शुरुआत की, लेकिन यहाँ से भी कुछ बहुत ज़्यादा बात नहीं बनी। लेकिन सफलता बहुत दूर नहीं थी। सन 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी 2 के गाने सुन रहा है ना, जो भी अभी आपने गाना सुना, इस गाने ने उन्हें रातों रात देश भर में मशहूर कर दिया और अंकित तिवारी माया नगरी के एक बड़े स्टार के रूप में शामिल हो गए।

सफलता की भी अलग कहानी है। अंकित तिवारी जब अपने संघर्ष के दिनों में थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के बाहर जाते थे, अपनी डेमो सीडी देते थे, प्लेबैक सिंगर का सपना लिए हुए कई स्टूडियो के चक्कर लगाते थे, कहीं बात नहीं बन रही थी। कई बार तो निराशा ने ऐसे झकड़ा कि अंकुर ने सोचा कि अब कानपुर वापस लौट जाना ही बेहतर है। लेकिन बड़े भाई के साथ ने और हिम्मत ने अंकित को जमा करके रखा। उन्होंने जिंगल्स बनाने शुरू किए, टीवी सीरियल्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने तैयार किया। और अंकित हमेशा कहा करते थे कि मुझे शुरुआत के दौर में वो काम करना है जो मेरे डायरेक्टर को पसंद आए, क्योंकि जब डायरेक्टर को काम पसंद आएगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी और उसी से फिर संगीत की गाड़ी आके निकल चलेगी। इसी वजह से अंकित ने ये सोचा कि प्लेबैक सिंगर बनने की बात अभी थोड़ा पीछे रखते हैं, और वो एक कंपोज़र बन गए और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई। और फिर ऐसा समय आया कि अंकित को माया नगरी के सबसे बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अंकित तिवारी को उनकी गायकी और संगीत के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का, और यह पुरस्कार मिला था फिल्म आशिकी 2 के लिए, क्योंकि उन्होंने बतौर कंपोजर ही फिर शुरुआत की थी ना, तो पहला पुरस्कार भी बतौर संगीत निर्देशक ही उन्हें मिला। और गायकी उनका सपना था, तो उस पर भी फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का उन्हें मिला। सन 2015 में गाना था गलियां।

सूर्य में भी ग्रहण लगता है, चांद में भी दाग है, और कहते हैं कि कपड़ा जितना सफेद होता है उसमें हल्का सा भी दाग अलग से दिखता है। अंकित तिवारी के इस चमकते कैरियर के दौरान एक ऐसा दौर आया जब उन पर एक घिनौना आरोप लगा और अंकित तिवारी को सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज को निकलना ही है। माया नगरी ने अंकित तिवारी से दूरियां जरूर बनाई, लेकिन उनकी कला फिर से एक बार उनको हम सबके बीच में लेकर के आएगी और हम अंकित तिवारी के संगीत से फिर से एक बार अपने कानों को सराबोर करेंगे।

0: इस कदर प्यार है।
1: यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं पांच देशों की यात्रा

कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML टाटा

इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत

भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भार का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं

जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इस कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा

ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लीड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ है। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगा

0: लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया

0: का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डर सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others.

कार्यक्रम विज्ञान भारती सुनिएगा रात 9:30 बजे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भास्कर दास का बांसुरी वादन सुनिएगा दिन में 12:15 बजे। अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30 बजे। कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। महिलाएं अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत रेणु मिश्रा के स्वर में कहानियां सुनवाई जाएंगी और नीलम शर्मा के स्वर में लोकगीत होंगे।

कुछ और लोकगीत सुनिएगा दिन में 2:30 बजे। कलाकार होंगे मुकेश बेगाना, शशि बाला जैन, मुंशी लाल सोनकर और साथी। धरती की गीत सुनिएगा शाम 5 बजे, स्वर होगा सूरज कुशवाहा का।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी लेकर के आएंगे शाम 5:15 बजे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात। इसके अंतर्गत डॉक्टर शिखा से ब्रजेंद्र नारायण की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा आंखों की सामयिक बीमारियां एवं उसका निदान। साथ ही मानिक चंद्र पटेल और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत सुनिएगा वार्ता डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियां। वार्ताकार होंगे प्रवीण शेखर। शाम 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। इसमें सुनिएगा रमा सेन के स्वर में गीत।

और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस होगा रात 8:30 बजे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भास्कर दास का राग मधुमाद सारंग में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री विनोद कुमार मिश्र।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे भास्कर दास का राग मधुमाद सारंग में बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री विनोद कुमार मिश्रा। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: देते गाना लिखा है इंदीवर साहब ने और जो इसमें संगीत दिया है वो है अनु मलिक का। और नीतीश जी को ये गाना बेहद पसंद है जैसा कि वो बता रहे हैं। तो नीतीश जी किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते?
1: हमारे भी खास ट्रक ड्राइवर जी हैं।
0: अच्छा, और
1: बस हमारे एक ही खास दोस्त।
0: अच्छा, एक ही खास दोस्त हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं जानम फिल्म का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम नितेश आर्य है।
0: जी नितेश आर्य जी, बताइए आपको कौन सा गीत सुनना है।
1: फिल्म का नाम है जानम और गाने भवन पत्ते पत्ते पे दिल का इकरार लिख दिया, जन्मों की दीवार से प्यार लिख दिया।
0: जरूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गाना। अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में ये गीत है।
1: बहुत अच्छा।
0: अच्छा, ये आपको गीत बहुत पसंद है।
1: बहुत पसंद, इसमें जो गाने के बोल है बहुत पसंद।
0: अच्छा, गाने के बोल पसंद है, तो चलिए बता

0: छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी माधव दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी प्रयागराज के माध्यम से। दीदी आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने परिचय बहुत ही कविता के रूप में दिया, बहुत अच्छा लगा जानकर। तो ये बताइए आज गीत कौन सा चुना है आपने?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विधाता
1: जी,
0: हाथों की चंद लकीरों का, ये खेल है
1: सब तकदीरों का। वाह वाह, बहुत बढ़िया गाना चुन लिया आज आपने। तो विधाता फिल्म के इस गीत को सुनवाते हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी की पसंद का गीत है, आप सब भी सुनिए।

0: किनारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता।
1: आप आए बाहर आई फिल्म का ये गाना।
0: हाँ,
1: है
0: आप आए बाहर आए।
1: तो आइए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का आप आए बाहर आई फिल्म का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: सतपाल सिंह पटेल बोल रहे, पूर्व प्रधान, थानापुरम मुफ्ती सल्लापुर प्रयागराज से। मैम
0: जी, छत्रपाल जी बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे और अक्सर इनका कॉल भी आता है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: मुझे तेरी मोहब्बत का

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बिल्कुल अच्छे हैं मैम।
0: प्रेमचंद जी बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है सुल्तान और गाने के बोल हैं जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, गाने को गाया है राहत फतेह अली खान ने।
0: अच्छा, ये जो फिल्म है ये सलमान खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म थी?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम
0: जी,
1: 2016 में आई थी।
0: अच्छा, आपको अपने मित्रों के नाम लेने हो तो आप ले सकते हैं।
1: हाँ मैम, हरिओम यादव हैं, प्रियांशु यादव हैं, उसके बाद साहबलाल यादव हैं, सुमित यादव हैं, हमारी तीन बहनें हैं आंचल यादव, काजल यादव, शिखा यादव, हमारा छोटा भाई अंकित यादव, हमारे मम्मी का नाम है चित्र रेखा देवी यादव।
0: तो हम आपको सुनवाते हैं सुल्तान फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश प्रयागराज
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: जी मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: जी
1: बहुत दिन बाद फोन किया हूँ, हमको याद नहीं है कब फोन किया था।
0: चलिए आज आपसे बात हो गई। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म सरस्वती चंद्र का फूल तुम्हें भेजा है खत में।
0: फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत दूर से आपने कॉल की है इस कार्यक्रम में, बिहार से।
1: जी जी दो दोस्त हैं मेरे।
0: हाँ जी, नाम बताइए।
1: गजराज लोधी, विजय हाँ। कुमार पांडे शारदा बाबू हैं, अविनाश भाई त्रिपुरा के हैं, देवनाथ भाई त्रिपुरा के हैं, और आप लोग हम लोग हुए।
0: तो आपको सुनवाते हैं सरस्वती चंद्र का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में

0: सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: साफ तरीके से नौकरियां दे चुकी हैं। वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन तमाम नौतैनात नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने अवामी फलाही इकदाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले में कल रियासत में घरों की गिनती और फहरिस्तसाजी शुरू हुई। इस सिलसिले में शुमार कुंदगान और निगरानों ने रियासत के 3,89,312 घरों की फहरिस्तबंदी के ब्लॉक्स में सर्वे का काम शुरू किया। इस दौरान लखनऊ में वजीर आला की रिहायशगाह, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल को भी शुमार किया गया। इस मरतबा न सिर्फ घरों की गिनती बल्कि रियासत की तारीखी और सकाफती शिनाख्त भी मरदमशुमारी का हिस्सा बन रही है। मुहिम के पहले ही दिन 1,35,00,000 से ज्यादा घरों पर मरदमशुमारी के घरों के नंबर लगाए गए हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन कल मुल्क भर में शुरू की गई। इसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए सपोर्ट सिस्टम को मुस्तहकम करना है। जीवन ऐप सरकारी फलाही स्कीमों, हंगामी इमदाद और बुजुर्ग शहरियों की रिहाइश के बारे में मालूमात फराहम करेगी। वजारत जल शक्ति के पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे की तरफ से जारी करदा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का बेहतरीन जिला करार दिया गया। रियासतों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। वाराणसी के चीफ डेवलपमेंट अफसर प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि यह सर्वे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मुल्क के देहातों में सफाई की असल हालत का जायजा लेने के लिए किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने दर्जे 12 के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी शीटों की स्कैनशुदा कॉपियां हासिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया है। CBSE ने यह फैसला अपनी वेबसाइट पर दरखास्तों में इजाफे और तकनीकी खराबियों के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट यकम जुलाई से नवी जमात के तलबा के लिए 3 जबानों को लाजमी करार देने के CBSE के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत करेगी। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली और जस्टिस जॉय मालिया बागची और विपुल एम पंचोली पर मुश्तमिल बेंच के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुफाद आमा की अर्जी तलबा, असातजा और वालदैन ने दायर की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया। ईंधन की कीमतों में ये तीसरी नजरेसानी है, जिसमें 15 मई को 3 रुपये फी लीटर, 19 मई को 90 पैसे का इजाफा हुआ। ये इजाफा ईरान के तनाज़े और अबनाए हरमूज में रुकावटों के बाद आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान हुआ है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में वाक़ झांसा गांव में देर रात सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे सोए हुए खानदान को कुचल दिया। हादसे में जख्मी होने वाली एक खातून को तश्वीशनाक हालत में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेफर किया गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। आज IPL क्रिकेट मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात रियासत को अपनी लपेट में ले रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बांदा कल लगातार 6ठे दिन रियासत का गर्म तरीन जिला रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के मशरिकी और मगरबी इलाकों में दिन के वक्त हीट वेव की वार्निंग जारी की है। लखनऊ महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने कहा कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल के तूफान की भी तवक्को है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1,026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम पनघट।

0: सरस्वती, अरे सरस्वती बहनी, हम कहतों से राम राम।
1: राम राम बहनी, अपन गट सुने बैठी सब बहनी हरन के भी
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और
1: और
0: बताओ सरस्वती बहनी, घरे दुआरे का हाल चाल और मौसम का हाल चाल?
1: अरे चंपा बहनी, सब कुछ एकदम बढ़िया बाटे। और तू तो देखते हो मौसम का कितनी भाई प्रचंड गर्मी पड़त है, लू
0: बिल्कुल
1: चलत बाटे, है ना। और
0: हाँ
1: हम सबे हमेशा अपन घटे पे अपने बहनी हरन के बतावत रहती कि अपन बहुत बहुत ध्यान रखे करें
0: बिल्कुल
1: ए लू के चलत है जौन समय।
0: हाँ, घर
1: तो
0: से निकलत भर अपन
1: हाँ
0: सर वर ढक के बढ़िया बांध वांध के पानी लई के निकले।
1: हाँ और पेट में हमेशा भरा रहे, देखा खाली पेट में लू ज़्यादा लगता
0: बिल्कुल
1: है ना। तो भाई तर होए रहे अपन, सिर ढके रहें, तभी घरे से बाहर ही निकले, और खड़ी धूप में तो बिल्कुल ही नहीं निकले।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: कौन देखो काम हुए तो सुबेरे अपन 9 बजे तक अपन कर लें, 10 बजे तक, और साँझ एक फिर करें जब तनी डुन हल्के वो हो जाए, ठंडा हो जाए मौसम।
1: और चंपा
0: हाँ
1: जाना थू तो देखा खेती किसानी में तो घरे से बाहर ही निकले ही के पड़त
0: बिल्कुल
1: है ना। और घरे के कामकाज भी संभारे के पड़त है, कबो कबो देर सबेर भी हो जात
0: सही
1: है
0: कहते
1: ना।
0: बहनी,
1: लेकिन काम तो करे के
0: बिना
1: है ना,
0: काम करे कहाँ
1: चाहे हम हो
0: चलेंगे।
1: चाहे तू हो चाहे हमार सब बहनी हरन है, काम बदे तो निकले के पड़ी है
0: बिल्कुल
1: ना। तो देखा इतनी लू में इतनी गर्मी में कैसे अपने आप के संभारे के, वही सब हम सब बात करत रहे है
0: बिल्कुल।
1: ना। तो और बतावा।
0: और सब बढ़िया दिखा भी नहीं।
1: हाँ
0: अब जब बात क्यों, तो किसान भैया हरे हैं तो उन्हें खेते में जाए ही पड़त है,
1: हाँ
0: बिना जाए अगर वो खेत में ना जाए तो हम सबके पेट कैसे भरी,
1: सही बात
0: और
1: है।
0: हम सब भी खेते में ना जावे तो जोन धान गेहूं कैसे हुई, तो हम सब काव खाब काव ना खाब। तो देखा हम तुम्हें एक चीज़ कह चाहते ही, देखा खीस लाता है गांव में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद।
1: इतना एकदम
0: तुम्हें
1: तू
0: तो लगा
1: सही
0: था स्वाद आएगी
1: कहत
0: एकदम।
1: बिल्कुल। और देखा हमहू तो
0: हाँ
1: से एक दू लाइन कहे चाहत ही है
0: ओ
1: ना,
0: का
1: दू पंक्ति में एक बहुत जानी मनी बात कहब। शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूँ, शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूँ, जहन में पर गांव का नक्शा रखा है।
0: बिल्कुल। तो देखा सरस्वती बहनी, चला जब इतनी अच्छी अच्छी हम सब पंक्ति कहे तो
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी बात भी कह लिया जाए। तो देखा आज हम बात करब गांव और उसकी खासियत के बारे में।
1: बिल्कुल, यही चर्चा हम आज बहनी हरन के साथ तोहरे साथे करे चाहत रही कि गांव का खासियत हवे।
0: बिल्कुल
1: देखा शहर में तो हम सबे रहते ही और कितनी अपने जीवन में दौड़ा भागी देखा थी है ना, और गांव में भी हम सबे रहे हैं और रहत
0: बिल्कुल
1: भी है ना।
0: बिल्कुल
1: लेकिन दोनों का अपन अपन महत्व भी है, अपन अपन जरूरत भी
0: बिल्कुल
1: है ना। लेकिन आज चर्चा गांव
0: गांव की
1: की।
0: खासियत के बारे में।
1: हाँ
0: तो देखा बहनी, गांव खाली मिट्टी के घर और पगडंडी के नाम नहीं होते है, बल्कि भारतीय संस्कृति परंपरा और ओकर जो आत्मा होते है ओकर जीवंत रूप होते है। और अपने देश देखा भारत में गांव के देश कहा जाता है, कहें कि आज भी देश के एक बड़ी आबादी जोन है गांवन में निवास करत है। और देखा बहनी, गांव के सादगी, आपसी प्रेम, प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हर केहू के मन के मोह लेत है। और शहर के जवन भागदौड़ और शोर शराबे से दूर एक गांव ऐसी जगह है जहां इंसान प्रकृति के सबसे करीब होत है। और इबरे देखा कहा जाता है ना, भारत जोन है वो आत्मा है गाँव के, में गांव के आत्मा में बसत है भारत में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तोर बात के भावना के समझा थी।
0: हाँ
1: और देखा जब गांव के जन सबेर होते हैं ना, जैसे सबेरे के देखा जब कितना मनमोहक दृश्य होता है,
0: बिल्कुल
1: चिड़िया के चहचहाट सुने के मिलत है। काहे कि देखा शहर में तो अब इतना पेड़ पौधा बचा नहीं है ना। गांव में जेबू तो घना घना नीम के पेड़ मिली,
0: नीम है,
1: घना घना
0: आम है,
1: आम एक
0: बगीचा
1: बगीचा
0: है।
1: मिले है
0: हाँ
1: ना। तो वहाँ देखा चिड़िया के आश्रय स्थल होते है ना। तो वो अपने आश्रय स्थल पे जाते है, चू चू चू चू करत है। तो सवेरे उठ जेबू अगर तू सब भोरे भोरे तो कितना अच्छा लगी, जैसे
0: बिल्कुल
1: लगे कि कोनो संगीत तू सुनत हो है ना।
0: बिल्कुल। और सूरज के देखो पहली किरण जब निकलत है गांवन में, कितना नीक लागत है।
1: हाँ ऐसे लगा था कि धरती माता जो है सुनहरे रंग के चादर ओढ़ के बैठी हैं।
0: बिल्कुल
1: और देखा चिड़िया के चहचहाट हम कहते रही ना, जब वो फुदुक फुदुक के उड़त थी सवेरे
0: हाँ चलत
1: सवेरे,
0: है,
1: तो
0: चू
1: वो
0: चू चू
1: दृश्य
0: करत
1: का,
0: है।
1: हाँ वो दृश्य तो बस देखता ही बनत है ना। हम सबे के उठावा थी चिड़िया, वो तो दूसर बात है ये है ना।

0: कहाँ शहर में ये सब देखे एक मिलत है। और देखा सवेरे सवेरे हम सबे उठ के कैसे अपन अपन घरे में जल भर भर के ले आवत ही
1: हाँ, और देखो मंदिर जाए थे,
0: है
1: मंदिर घंटी कितना बढ़िया कान के एकदम, जान लो कि सुन ले, घंटी सुने से कान एकदम पवित्र हो जाते थे, ऐसा लागत
0: हाँ
1: है।
0: हाँ और जब घरे से निकला थी अपन अपन काम का, केहू खेते की ओर जात बा, केहू मंदिरे की ओर जात बा, केहू कुइया की ओर जात बा, है ना, सब कोई
1: बिल्कुल
0: अपने। तो रास्ता में एक दूसरे से जब भेंट हो जात है तो भाई बातचीत भी हो जात है
1: हाँ,
0: और अपन
1: तो हाल चाल भी
0: सीखे
1: मिल जाता गांव
0: बिल्कुल। हाँ
1: के।
0: और फिर जौन अगल बगल के हालू चाल मिला था अपना, वो हाल चाल आदमी बांटा था, सुख दुख करा था एक, और ऐसे जौन निकटता और प्रेम और सौहार्द बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा तू। और देखा सरस्वती बहनी, गांव के सबसे बड़ी खासियत है भाईचारा और प्रेम। गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता है। यदि कोनो के कोनो परेशानी हो जात है, तू ओकरे घरे जाई के ओकरे परेशानी के पूछत है और ओकरे परेशानी के समझत है, ओकर अगर मदद करे लायक होते तो ओकर मदद करत है। शहर में का होता कि अगल बगल के लोग ही पहचान में आते के हो, काहे कि दूर
0: सही
1: दूर से
0: बात
1: लोग
0: है।
1: आगे बसत है।
0: और बहुत भागा दौड़ा वाला भागा दौड़ी के दिनचर्या होता है तो हम सब भेंट नहीं कर पाए,
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: जबकि गांवन में आज भी हम सब एक साथ देखा। हम बात कर तो से कहत रही ना कि खूब देखा, नीम के छाया में हम सब इकट्ठा होती बैठा थी, हंसी मजाक करत थी, लइकवन वही सामने खेलत रहा थे, है
1: हाँ
0: ना, और सब खाना बनाए बनाए कि सब पतोहियन जब बाहरे निकल आवत थी थोड़ी थोड़ी देर बदे, है ना, तो
1: और
0: कितना
1: देखा सांझे बेरिया तालाबे जात है, नदी होत है अपने
0: बिल्कुल।
1: गावन में, वो पे
0: हाँ
1: सब लोग इकट्ठा होते हैं और
0: हाँ
1: कुछ लोग देखो भाई सापन लेके जाते हैं नदी में नहुआवत हैं,
0: हाँ
1: कितना नीक लागत है देख कर। और
0: बिल्कुल
1: भाई भी
0: बिल्कुल
1: कितना मजे से नहात हैं,
0: हाँ
1: अपन पूछ ऐसे ऐसे मार मार के पानी में, एकदम देख के मन खुश हो जात है।
0: बिल्कुल सही कहा तू, सब प्रसन्न चित रहते हैं, चाहे मनाई हो चाहे पशु पक्षी हो, है
1: और
0: ना।
1: देखा गांवन में दूध दही, जहाँ हम सब भाई भैंस के गाय बात करते नहाते हैं तो
0: हाँ
1: कितना अच्छा अच्छा देखो हम लोग को एकदम बढ़िया, कोनो में ना
0: शुद्ध
1: शुद्ध
0: पवित्र
1: चीज
0: पवित्र
1: और में ना
0: चीज
1: कोनो
0: एकदम
1: मिलावट ना कुछ, एकदम
0: बिल्कुल
1: बढ़िया
0: नहीं
1: दूध
0: बिल्कुल
1: मिलत
0: नहीं।
1: है,
0: हाँ
1: दही मिलत है,
0: हाँ
1: छाछ मिलत है, मक्खन मिलत है, सब कुछ मिल जाता है। अब सब पनीर
0: और
1: भी बनाई लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है हम लोग को एकदम शुद्ध।
0: हाँ अच्छा, तो देखा चंपा बहनी हमें लगा था कि गांव में आज भी एक अच्छी जीवन शैली जो है वो
1: हाँ
0: आसानी से मिल जाता,
1: बिल्कुल।
0: जबकि जैसे तू बोलत रही कहत रहो कि सब कुछ शुद्ध शुद्ध मिलत है, तो हम कहा थी एक आजकल शहरन में समस्या हो गई है ना दिनचर्या वाली,
1: हाँ
0: दिनचर्या बड़ी गड़बड़ाए जाते हैं। और गांवन में हम सब देखती कि एक नियमित समय पर सब उठत हैं और एक नियमित समय पर खाए पी के सब रात के समय से सोई जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना, तो ये दिनचर्या बहुत जरूरी है। काहे कि हम सब देखते कि तमाम बीमारियों के कारण आजकल दिनचर्या के गड़बड़ हो पे बाटे, है ना।
1: और देखा जब अब वो गए, अरे दिनचर्या बात करती हूँ, और देखो तीज त्योहार भी गांवन में कितना बढ़िया से कितना खुशी से उल्लास से मनावत हैं।
0: और
1: कौन
0: समय समय पे मेला भी लागत रहत
1: हाँ मेला
0: है
1: भी लागत रहत
0: ना,
1: है तो
0: और
1: ओकर भी आनंद ले
0: कितना।
1: ले ले था हम सब।
0: और देखा जौन तू तीज त्योहार के बात करत रहो, तो ई
1: हाँ
0: तीज त्योहार कितना अच्छे से मनावा जाता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो
1: हाँ
0: जौन रीति रिवाज है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलत है, और बहुत मतलब जितना लोक संस्कृति को संजोया जा सकत है गांव में उतना और कहीं देखे कि ना मिलते,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: सही।
0: तो
1: और देखा सरस्वती बहनी, किसान जोन होते हैं, अगर गांव के बात करें तो गांव में किसान लोग तो गांव में होते हैं, वो जोन होते हैं गांव के रीढ़ होते हैं, वो कठिन मेहनत कई के अन्न के पैदा करत हैं, जैसे पूरा देश भोजन प्राप्त करत है। किसान चाहे गर्मी होए सर्दी होए बारिश होए हर मौसम में मेहनत करत रहते हैं,
0: बिल्कुल सही कहा
1: वहाँ
0: तू,
1: के मेहनत और त्याग के कारण ही देश आत्मनिर्भर बनत है। यही बड़े गांव और किसान दोनों देश के उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभावत हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तू। और देखा गांव के हम सबे बात करी कि गांव में कितना सुंदर स्वच्छ वातावरण हम सबे के मिलत है ना, तो आज भी हम सबे अगर गांव में झांकी तो जौन प्रेरणा हम सबे के मिलत है, जैसे तू बोलत रहो कि किसान भैया रे कैसनो मौसम हो मेहनत
1: उन्हें
0: करे से
1: हाँ
0: हिचकिचाता नहीं, और हम
1: बिल्कुल
0: सबे के अन्न का व्यवस्था करत है
1: करत
0: और
1: रहत है।
0: देश में आर्थिक रूप से सहयोग करत है।
1: अच्छा देखा गांव का पानी और गांव की बोली दोनों में मिठास होत है,
0: ये तो बिल्कुल
1: और यही
0: सही कहा
1: मिठास
0: तू।
1: के साथ साथ हम
0: हाँ
1: तुम्हें एक और मिठास भरी लोकगीत सुनवाई दी, नीलम शर्मा से दादरा चला सुन लिया जाए, तुम्हें
0: चला
1: सुना बहनियारे भी सुने।
0: चला सुन लीन जाए।

0: सरस्वती भाई नहीं?
1: हाँ चंपा भाई, नहीं देखा इतना बढ़िया तू गीत
0: हाँ
1: सुनाए रहू, और सच्चे तू कहत रहू, बहुत मीठ मीठ तो का गीत सुनाऊ, आ बहुत बहुत अच्छा लगा तोर गीत। अब देखा हम तो का एक ठे कहानी सुनवाऊ, है ना,
0: हाँ
1: मधुर मिलन, और सुनावत
0: कहानीकार
1: ही।
0: हैं रेणु मिश्रा बहनी, तो चला सुन लिया जाए।
2: 4 साल बीत गए मगर राधिका का पति रत्नेश राधिका को पत्नी का दर्जा व सम्मान नहीं देता था। राधिका प्रतिदिन अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा से करती और पति की उपेक्षा को नजरअंदाज करती। राधिका को लिखने का शौक था, वह समय पाकर प्रायः रात को अपने मन के भाव डायरी में लिख दिया करती थी, परंतु वह डायरी किसी को दिखाती नहीं थी। राधिका की सास उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन ललिता अपनी बहू राधिका को अपनी सहेली कविता के पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में ले जाती है। राधिका वहां का दृश्य देखकर बहुत आनंदित हुई। उसने अपनी सास से कहा, माँ ऐसे कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है। उसकी खुशी देख ललिता को अच्छा लगा, क्योंकि राधिका ने 4 साल में पहली बार अपने मन की बात कही थी। एक दिन बहू का स्वास्थ्य सही ना होने के कारण ललिता को घर की सफाई करनी पड़ती है। सफाई के दौरान उसे राधिका की डायरी मिल जाती है। वह डायरी पढ़कर बहुत खुश हुई, पर बहू से कुछ नहीं कहती। कुछ महीनों बाद ललिता की सखी कविता ने अपनी नई पुस्तक के लोकार्पण हेतु ललिता को पुनः बुलाया। राधिका ने पूछा, माँ मैं इस बार भी आपके साथ चलूं? माँ ने कहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जाऊंगी। बहू राधिका का चेहरा उतर जाता है। तभी माँ कहती है, इस बार तुम और रत्नेश मेरी जगह पर कार्यक्रम में चले जाना। कविता से कहना माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। हम दोनों को भेजा है। माँ ने रत्नेश को जाने के लिए कहा, पर बेटे ने साफ मना कर दिया। किंतु माँ के आग्रह पर ना चाहते हुए भी रत्नेश को राधिका के साथ कार्यक्रम में जाना पड़ा। सभागार का मंच बहुत सुंदर सजा था, बहुत सारे लोग आए थे। राधिका वहां पहुंचकर मन ही मन बेहद प्रसन्न थी, पर प्रसन्नता अपने पति से जाहिर नहीं करती। कार्यक्रम आरंभ होने से पहले कविता ने राधिका को मंच पर बुलाया और कहा, ललिता नहीं आई तो उसकी जगह तुम्हें बैठना है। कार्यक्रम में बड़े नामचीन लोग आए थे। मंच पर बैठे अध्यक्ष, मुख्य अतिथि आदि राधिका को बधाई दे रहे थे। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगा शायद माँ के हिस्से का सम्मान मुझे दे रहे हैं। खैर, संचालिका महोदय ने पुस्तक का नाम मैं उनसे हूं बताया और कहा, इस पुस्तक में पति पर आधारित अनेक रचनाएं हैं। लोकार्पण के दौरान पुस्तक के कवर पर रत्नेश की फोटो और लेखिका राधिका थी। राधिका ने पुस्तक देखी तो रचनाएं उसकी थी। वह आश्चर्यचकित हो गई, किंतु अंदर ही अंदर वो बहुत प्रसन्न थी। उसे समझ में आ गया था कि यह सब माँ ने किया है। सजल नयनों से माँ को याद करती और निःशब्द हो माँ को कोटि कोटि मन से धन्यवाद देती। सबने राधिका व रत्नेश को अनेक बधाई दी। क्रोध में बैठे उसके पति ने पुस्तक की रचनाओं में राधिका का अपने लिए समर्पण देख भाव विभोर उठता है। सबके सामने राधिका को गले से लगा लेता है और देखते ही देखते सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।
0: सरस्वती बहनी,
1: हाँ चंपा, देखा रेणु मिश्रा कितनी बढ़िया कहानी सुनाई, और सच में कहानी का जो नाम है मधुर मिलन, ये तो
0: बिल्कुल
1: है ना। तो चला एक ठे ऐसे और कहानी सुन ली जाए रेणु मिश्रा जी से, आशीर्वाद,
0: चला सुन लिया जाए।
2: राजेश राधा अपने बेटे श्याम को बहुत प्यार करते हैं। उसकी खुशी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर श्याम अपने माता पिता का अपमान अपने स्वार्थ के लिए हर बार करता है। श्याम की पत्नी भी अपने पति का सहयोग इस कार्य में भरपूर करती है। माता पिता स्वभाव के अनुसार पुत्र मोह में चुप रहते हैं। अपने पिता को श्याम बात बात पर यह ताना दिया करता कि आपने मेरे लिए क्या क्या, मैं आज सफल हूं तो अपने दम पर, आपने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया।

0: कि मैं आपको मानूं। बेटा, बहू के व्यवहार से व्यथित एक दिन माता पिता अपने पुत्र का दुख कम करने के लिए घर छोड़कर आश्रम चले जाते हैं। श्याम की पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ दोनों चले गए, खाना बचा, सुकून है। श्याम थोड़ा दुखी हुआ, पर स्वार्थ दुख से भारी था। कुछ दिनों बाद श्याम बीमार हो जाता है। बीमारी के कारण उसका कारोबार ठप पड़ जाता है, धन की कमी हो जाती है, घर में दुख दर्द का निवास सा हो जाता है। श्याम ने जीवन में इतनी तकलीफ कभी नहीं सही थी। अचानक उसे अपने माता पिता की बहुत याद आने लगती है। वह उन्हें खोजने के लिए परेशान हो जाता, लेकिन हालत श्याम की बिगड़ चुकी थी, वह सिर्फ रोए जा रहा था। इधर माँ का दिल एक बार अपने बेटे को देखने का कर रहा था, अतः दोनों श्याम से मिलने आते हैं। श्याम उन्हें देखते ही लिपटकर रोने लगता है और माफी मांगने लगता है। रोते हुए श्याम बोलता है, पिताजी, आपका सानिध्य कल्पतरु का आशीर्वाद था, मैं समझ नहीं पाया, आप दोनों से मैं हूं, आप नहीं तो मैं शून्य हूं, अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा। सब कुछ भूलकर माता पिता भावुक हो अपने पुत्र श्याम को गले से लगा लेते हैं।
1: सरस्वती बहनी,
2: हाँ चंपा,
1: देखा रेणु मिश्रा बहनी कितना नीक के कहानी सुनाई।
2: हाँ देखा, हम सभी की समझे के चाहिए चंपा, कि जीवन में हम जैसे कहानी में कहा गया ना कि हम तो सब चीज अपने बलबूते करे है, है ना, तो अपने बलबूते हम सब कह लेते ही ये सब है, हमें ऐसा लागत है। और जो छोटी छोटी बड़े बड़े काम जो हमारे माता पिता घर के बुजुर्ग लोग करते हैं, वो सबका हम सब समझित नहीं, और हम सभी की जरूरत है कि हम सब ओका समझी। और देखा, हम सब अपने बलबूते सब कुछ खरीद सकती, लेकिन आशीर्वाद नहीं खरीद सकती।
1: बिल्कुल,
2: है ना,
1: आशीर्वाद और ना मातारी बाप का प्यार।
2: बिल्कुल सही कहा तू। और देखा, मातारी बाप जो है जो भूमिका निभाए देती, वो भूमिका जीवन में कोई ना निभाई सकत, है ना। तो बहुत अच्छी कहानी लगी हमका, और सब बहनियरन के भी जरूर अच्छी लगी हुई। तो चला यही बात पे एक ठे सोहर सुन लीन जाए, नीलम शर्मा से
1: चला सुन लिया जाए।

0: सरस्वती बहनी जिन रोवा गोदी के ललनवा सवेरे घुनगुनवा मंगाई दे।
1: देखा कितना अच्छा भाव रहा सोहर में, है ना।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और कितने अच्छे से गावा गया रहा। तो चला चंपा बहनी, अब बहनी हरन सब जोहत ही कि कब तू ले चलू
0: रसोईया में।
1: रसोईया में। हाँ चला
0: हम
1: ले
0: सब आई
1: चला,
0: अपन घटे पे आई और रसोईया में ना जाए ऐसा हो सकत है।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ले चला। अब देखा और का बताइबू आज तू।
0: आ रसोई घर में हमला आई, घर पर ही बनाए मसाले।
1: अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया तू सुझावत हूँ भाई। देखा मसाला खरीदत खरीदत तो हम थक गए ही, है ना, इतना पैसा लग
0: पैसों लग
1: जाता
0: जाते और स्वादो नहीं रहा था
1: हाँ,
0: हमें।
1: स्वाद भी नहीं रहा और नकली भी रहा था
0: शुद्ध भी
1: और
0: नहीं रहा तू।
1: बहुत पैसा लगा के बहुत कम कम मिला था।

0: देखा घर पे जो मसाला बना था वो कितना स्वादिष्ट होता है और शुद्ध होता है, और स्वास्थ्य के लिए भी कितना बेहतर होता है,
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: इसमें
1: कहा
0: कोनो
1: तू।
0: प्रकार का मिलावट भी ना ही हो, और खाए में स्वाद भी कई गुना आवत है।
1: और मन के संतोष होता है ना,
0: हाँ
1: कि भाई देखा हम
0: और
1: एकदम शुद्ध
0: खुशबू,
1: चीज
0: हाँ
1: खाते
0: और
1: हैं।
0: खुशबू भी एकदम बढ़िया रहा है, और एक लंबे समय तक हम सब रख सके थे, लेकिन रखे खाती ऐसा डिब्बा ले जन हवा ना जाए
1: हाँ
0: वो में
1: हाँ
0: रखे
1: हाँ
0: तो ज्यादा दिन तक चली।
1: अच्छा तो इका कैसे बनावे का है घर पे, तनिक हमका बताए दे तो चंपा बहनी।
0: देखा बनावे के लिए ऐसे गरम मसाला बनावे के है
1: हाँ
0: तुम्हें जीरा ले लें 2 चम्मच, मतलब जो हिसाब से बनावे को है
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: जी कम रखे को ज्यादा दिन तक वही हिसाब से जीरा ले लें
1: हाँ
0: 2 चम्मच, धनिया ले लें खड़ी धनिया 3 चम्मच, और काली मिर्च ले लें 1 चम्मच, लौंग ले लें 8-10 ठू, और बड़ी इलायची ले लें 2 ठू, और छोटी इलायची 4 ठू ले लें, और दालचीनी 2 टुकड़ा ले लें छोटा छोटा, और तेजपत्ता 2 ठू,
1: अच्छा
0: ये सब के हल्का सा भून लें और ठंडा कर लें, और ठंडा करे के बाद एक पीस दें,
1: अच्छा
0: गर्म मसाला तैयार हो जाए,
1: अरे
0: और मन
1: वाह।
0: का है तो हल्का सूखा चाल दें छन्नी से,
1: हाँ।
0: थोड़ा सा अगर मोटा मोटा रही तो निकल जाए।
1: अच्छा।
0: और चाट मसाला देखा बना हुए तो भुना जीरा ले लें 2 चम्मच, और काला नमक ले लें 2 चम्मच, आमचूर पाउडर ले लें 1 चम्मच, और काली मिर्च ले लें 1/2 चम्मच, और हींग ले लें 1 चुटकी।
1: अच्छा।
0: हाँ इस सब के मिलाई के अच्छे से पीस लें, अभी का फल के साथ और सलाद और चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं कर।
1: अरे वाह।
0: और
1: और
0: सांभर मसाला देखा धनिया ले लें 4 चम्मच, और चना दाल 2 चम्मच,
1: अच्छा
0: उड़द दाल 1 चम्मच,
1: हाँ
0: और सूखा लाल मिर्च जो होते हैं वो का 5-6 ले लें, और करी पत्ता ले लें थोड़ा सा,
1: अच्छा
0: हाँ मेथी दाना ले लें 1/2 चम्मच करीब,
1: अच्छा
0: हाँ और सबके हल्का सा भून लें, और भून के एक ठंडा करके पीस लें,
1: अच्छा
0: और किचन किंग मसाला जो होते हैं वो का ले लें थोड़ा सा,
1: अच्छा
0: वो धनिया ले थोड़े से, और जीरा ले लें, और हल्दी ले लें, काली मिर्च, और सूखी अदरक, और दालचीनी थोड़ा सा,
1: अच्छा
0: एक लई के कुल हल्का से हो के भून लें, और भून के पीस लें, और पीस अगर सब्जी में डालने के लिए कितना बढ़िया मसाला तैयार हो जाए।
1: बिल्कुल। और
0: और
1: देखा
0: देखो हल्दी
1: चंपा
0: बनावे
1: बहनी।
0: को घर में तो
1: हाँ
0: हल्दी के भी थोड़ा सा सुखाए लें धूप में, वो
1: हाँ
0: कब दो कब कूट के वो कभी पीस लें,
1: अच्छा
0: और फिर एक कभी धैल डिब्बा में
1: हाँ
0: अपन इस्तेमाल करते रहें।
1: देखा कितना तरह तरह का मसाला तू बताऊँ चंपा बहनी,
0: हाँ
1: गरम मसाला, चाट मसाला, सांबर मसाला, और अलग अलग चीज़ में अलग अलग तरह का मसाला का ज़रूरत पड़ा था, तो ये तो तू बहुत ही बढ़िया बता दी हूँ है ना। और जैसे हम कहत रहे ना तो उसे कि देखा अपने घर में मेहनत करके जो चीज़ बनावा जाता है ना
0: वो
1: वो
0: बहुत
1: टिकाऊ भी होते
0: हाँ
1: है,
0: अशुद्ध
1: और
0: भी होता
1: मन
0: है।
1: के संतोष बहुत देता है। जब जब हम ओकर इस्तेमाल करब तब तब हमका लागत है कि देखा ये एकदम शुद्ध है और हमारे शरीर में शुद्ध चीज जाता
0: बिल्कुल
1: है ना। और देखा तू बताओ कि एक अगर हम सभी अच्छे से भून के
0: हाँ
1: ठंडा
0: भून
1: करके
0: के
1: रख
0: फिर
1: लेवे
0: हाँ
1: पीस
0: ठंडा
1: के,
0: करके पीस के रख,
1: तो जो ना और ऐसे बर्तन में रखें ताकि ये खराब ना हो, हवा ना लगे,
0: हवा ना
1: नमी ना
0: लागे,
1: जाए उनमें, है ना।
0: जो उनका थे ना एयर टाइट डिब्बा में तो उन्हें रखे से इका होता कि बढ़िया आराम से तू अपन का इस्तेमाल कर सकलू, कुछ महीना आराम से चली वो
1: और
0: खराब
1: तू
0: नहीं।
1: बताओ द्रो चंपा बहनी कि घर के
0: हाँ
1: मसाला के जो ने स्वाद और खुशबू भी अलग
0: हाँ
1: होता
0: बिल्कुल
1: ना।
0: एकदम अलग होता है, देखो कितना में स्वाद रहता है, कितना खुश कितना भीनी भीनी खुशबू आवत है,
1: हाँ तो
0: एकदम मन खुश
1: देखा
0: हो जाता है।
1: चंपा बहनी तू ये जो स्वाद और खुशबू की बात बतावत हूँ, हम आज ही जाके सब इंतजाम करबे,
0: हाँ अब घर
1: और
0: में बनाऊ तू
1: हाँ और इतनी
0: मसाला
1: कड़ी धूप होते बढ़िया से जो
0: सुखाई
1: ना, हाँ
0: जाएगी
1: आज हम एका करबे, और फिर तो का बताई कैसन स्वाद है और कैसन खुशबू। तो
0: बिल्कुल
1: चला अब तो का हम एक ठे गीत सुनाई देती फिल्म तराना से।
0: चला सुन लिया जाए, तू सुना बहनिया ने भी सुना।

0: सरस्वती बहनी, देखा हम सब गाँव ने भी सुन लिए। अब बात है ईमेल संदेश के, तो बहनी हरण के ईमेल संदेश सुनवाई दिया जाए।
1: चला सुन लीन जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत है और इमा आप नवा का जोड़े चाहत है। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
2: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कोनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार रही।
0: बिल्कुल सरस्वती बहनी, हम सब के बहनी अरन के
1: संदेश
0: के इंतजार
1: रहा था।
0: बिल्कुल,
1: तो अपन संदेश जरूर भेजे बहनी अरन।
0: बिल्कुल,
1: देखा गर्मी इतनी पड़त ना चंपा बहनी,
0: देखा घामे में, घामे हम सब निकली थे तो चेहरा अजीब सा हो जाता, रुखा रुखा हो जाता।
1: हाँ बिल्कुल, सब बहनी अरे परेशान है एकदम कि अपने त्वचा के का करी, अपनी सुंदरता के कैसे बनाए रखे।
0: बिल्कुल
1: है ना, तो देखा हम सब
0: सबसे पहले देखा सोचती बहनी खूब पानी पिए।
1: हाँ ये तो सबसे जरूरी,
0: जितने खूब पानी पी है जितने शरीर में पानी जाए उतने चेहरा के नमी बनल रही
1: और चमक भी बनी।
0: हाँ
1: और जाने तो घरे के सामान से ही प्राकृतिक
0: सुंदर, रसोईये के सामान से,
1: हाँ प्राकृतिक तरीके से अपने आप को सुंदर बनाए रखबो ना,
0: तो
1: सबसे अच्छा होता है।
0: बेसन में थोड़ा सा दही मिलाई के, हल्दी हाँ, मिलाई के लगावे ओकर लेप बनाई के,
1: दूध होता ही बा।
0: हाँ और दूध मिलाई के लगावे बेसन में।
1: हाँ
0: तो उसे का बोले,
1: ककड़ी खीरा नींबू ये सब तो हम सब के घर में आजकल के मौसम में भरा पड़ा।
0: बिल्कुल,
1: बस थोड़ा सा तरबूज के रस ले ले कबो 2 चम्मच, कबो ककड़ी के रस ले ले, थोड़ा 2-4 बूंद जौन है नींबू का रस ले ले, उन्हें भी कबो बेसन मिलाए दे, कबो जो आटा मिला
0: मलाई दूध वाला मिलाए दो मैं कभी कभार,
1: और कबो जौन है जौ का आटा मिलाए दे, ऐसे मिलाए मिलाए के लगावत रहे अपने त्वचा पे, ताकि मुल्तानी असर जौन है कम हो।
0: मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा गुलाब जल मिलाई के लगावे तो का हुई वो ठंडा।

0: वो शरीर के ठंडक रखा था,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और ठंडा भी रखी और चेहरे पे चमक भी लाई।
1: और ये सब चीज तो आजकल हम सबे जाना थी, बस करे एक देरी बा करबू तो परिणाम मिले सुंदर सुंदर।
0: बिल्कुल।
1: तो अब चंपा बहनी
0: देखा गर्मी पड़त है तो देखा तरबूज खरबूज ककड़ी नेनुआ तरवई सब मतलब बढ़िया बढ़िया सब्जी भी हरी हरी आवत है
1: और लगावे तो भी और
0: खाए भी
1: और बढ़िया देखा अच्छा सब... सूती कपड़ा पहन के रहे गर्मी में
0: हल्का रंग के
1: हाँ और बढ़िया अपन पूरा पूरा ध्यान रखे और फिर हम सब पनघटे पे आके फिर बहनी हरन से मिला जाए बातचीत करा जाए और नई नई बातों पे चर्चा करी जाए।
0: बिल्कुल। और देखा बहनी यह समय जो है कि हाँ। तेल मसाला गर्मी में कम खाएं।
1: हाँ अतु तो बतावत रहो कि मसाला कैसे बनावे का है।
0: नहीं मसाला तो बताए बुना मसाला डालें कम डालें सब्जी में।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और ज्यादातर हो सके तो हरी सब्जी खाएं।
1: हाँ, देखा बिना मसाला के तो हम सब के काम चल भी न करें।
0: बिना मसाला
1: काम मसाला तो चंपा भाई नहीं बताए हैं
0: यही बारे हम बताए घर में
1: कि खूब भर भर के खाओ है
0: ना। यही हम कहें ना घर में बनावे शुद्ध बनी और कम डाली के मसाला सब्जी बनावे। इसमें बनावे ज्यादातर तरबूज खरबूज बताया ना हमें पानी होते कितना देखो
1: हाँ, हाँ।
0: वो का खाए तो काफी पानी कमी ना हुई शरीर में और हरी सब्जी खाई तो ज्यादा मसाला सारा ना खाए पाई है।
1: तो चला चंपा बहनी अब बहनी अरन से राम राम कह लीजिए।
0: हाँ, घड़ी सारा करत है घरे
1: हाँ,
0: चले के बेला होते
1: हाँ।
0: बहनी अरन से राम राम किया जाए।
1: राम राम
0: राम राम बहनी अरे।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे, क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में।

0: that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct, and everyday actions.
1: Karma Yogi, Prarambh. जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी. मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है. यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए. विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं.
0: Mr. Modi highlighted that the world is eager to be a part of India's growth journey. The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
0: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है, और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है.
0: The Prime Minister encouraged the new appointees to make the most of the iGOT Karma Yogi platform, noting that it would help them grasp their responsibilities with ease. Mr. Modi expressed confidence that these new appointees would contribute to the nation's progress and that their work and decisions would play a key role in realizing the vision of Viksit Bharat. In Rajasthan, employment fairs were organized in Jaipur, Jodhpur, Ajmer and Bikaner, where appointment letters were distributed to more than 1,100 youths. Railway Minister Ashwini Vaishnav attended the state-level Rozgar Mela held in Jaipur. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that recruitment for more than 1,60,000 posts in the railways is currently underway, with over 4 crore candidates participating in the process. He said that earlier, recruitment procedures used to take several years to complete, causing delays for job aspirants. However, with the introduction of the annual recruitment calendar system, efforts are now being made to complete the process within a fixed time frame.
2: Railway mein aaj kareeb kareeb 1 lakh.
3: Work is currently underway for approximately 1,60,000 recruitments. You must be aware that previously, recruitment used to come out once every 8 to 10 years or once every 4 to 5 years. That was the era of the Congress during the time of the UPA. When Modi ji took responsibility, he compressed that time, and after that, some time ago, an annual calendar system was introduced and a clearly defined timetable was made.
2: Annual calendar ki vyavastha.
0: In Punjab, the 19th Rozgar Mela was organized at two places, including Rail Coach Factory RCF Kapurthala and Patiala Locomotive Works Patiala today, where appointment letters to 281 new beneficiaries were distributed. At RCF Kapurthala, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri, while presiding over the program, said that the Rozgar Mela has become a powerful national institution which ensures transparency and merit-based time-bound recruitment.
4: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए. मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स, मशीन लर्नर्स, लर्निंग इंजीनियर्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स. India is preparing our young people.

0: रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट

0: ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणाली

0: को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार,

0: ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर थोड़ी देर में लोकगीतों का कार्यक्रम होगा।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
6: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
5: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
6: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
7: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए अब सुनिए लोकगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश बेगाना और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

इस कहरवा के साथ ही आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजने को हैं। अब मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सूरज कुशवाहा के स्वर में लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए कहरवा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत। लीजिए अब सुनिए सूरज कुशवाहा के स्वर में पूर्वी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती के गीत। कलाकार थे सूरज कुशवाहा, इनके स्वर में आप सुन रहे थे लोकगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। ऑफिस, कॉलेज, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस और ट्रैफिक से भरे दिन के बाद आखिरकार शाम ने एंट्री ले ही ली है, तो अब थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा युवा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव।
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति। दोस्तों, आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है? हमारी जिंदगी का आधा स्ट्रेस काम ज्यादा होने से नहीं बल्कि कौन सा काम कब करना है ये ना समझ पाने से होता है।
0: बिल्कुल। अब जैसे सुबह का ही सीन ले लो, अलार्म 6 बजे का लगाया था मॉर्निंग वॉक के लिए, राइट? लेकिन उठते कब है? जब मम्मी तीसरी बार बोलती है उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे।
1: और फिर शुरू होती है ओलंपिक लेवल की स्पीड। एक हाथ में टूथब्रश, दूसरे हाथ में फोन और दिमाग में बस एक ही थॉट, आज फिर प्लानिंग फेल हो गई।
0: एग्जैक्टली। फिर चाहे कॉलेज असाइनमेंट हो या ऑफिस प्रेजेंटेशन हो या शादी में जाने से पहले बस 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी वाला कॉन्फिडेंस लास्ट मोमेंट केओस ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ का पार्ट बन चुका है।
1: बिल्कुल। और फनी बात तो ये है कि जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो हम अक्सर कहते हैं ना, यार किस्मत ही खराब थी। लेकिन कई बार प्रॉब्लम किस्मत में नहीं बल्कि प्रिपरेशन में होती है।
0: ट्रू। क्योंकि जब प्लानिंग क्लियर होती है ना तो छोटे छोटे काम भी आसान लगने लगते हैं, और जब प्लानिंग ना हो तो सिंपल काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हैबिट की जो स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आज का हमारा विषय है बेहतर प्लानिंग की सफलता का मूल आधार।
0: दोस्तों, सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती।

0: मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है, और वही डायरेक्शन देती है प्लानिंग।
1: अब यही सोचिए कि अगर कोई बिना मैप देखे किसी नए शहर में निकल जाए तो चांसेस क्या हैं? या तो रास्ता भटक जाएगा या फिर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा।
0: एग्जैक्टली, लाइफ में भी प्लानिंग भी उसी मैप की तरह काम करती है। ये हमें बताती है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: स्टूडेंट्स तो इससे परफेक्टली रिलेट करेंगे, है ना अंजलि?
0: हाँ एग्जैक्टली।
1: पूरा सेमेस्टर चल और फिर एग्जाम से दो दिन पहले, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं।
0: और फिर हाइलाइटर लेकर पूरा सिलेबस हाइलाइट किया जाता है, जैसे कोई आर्ट गैलरी का कोई आर्ट वर्क कर रहे हो। लेकिन जो लोग थोड़ा थोड़ा रोज प्लान करके चलते हैं, उनका स्ट्रेस ना कंपैरेटिवली कम होता है।
1: और प्लानिंग सिर्फ स्टडीज तक लिमिटेड नहीं होती है, मंथली बजट हो, फिटनेस गोल्स हो या फिर डेली रूटीन, हर जगह प्लानिंग हमारी लाइफ का एक ऑर्गेनाइज, मतलब हमारी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज बनाती है।
0: एग्जैक्टली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लानिंग परफेक्शन नहीं मांगती, कंसिस्टेंसी मांगती है। छोटे छोटे प्लान्ड स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स तक पहुंचाते हैं।
1: और कभी नोटिस किया है, जब हमारा कमरा साफ और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हमारा माइंड भी कितना शांत और चिल लगता है।
0: क्योंकि क्लैरिटी आउटसाइड ऑफन क्रिएट्स क्लैरिटी इनसाइड टू, और शायद इसीलिए बेटर प्लानिंग सिर्फ सक्सेस नहीं देती बल्कि पीस ऑफ माइंड भी देती है।
1: और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लानिंग का मतलब रिजिड होना नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हर मिनट कंट्रोल करना है, बल्कि प्रायोरिटीज को क्लियर रखना है।
0: एग्जैक्टली। तो दोस्तों, बेटर प्लानिंग के लिए कुछ छोटी छोटी लेकिन यूजफुल बातें हैं, जैसे बड़े काम जो हों उसको छोटे छोटे चंक्स या स्टेप्स में बांट लीजिए, सो दैट विथ एवरी कंप्लीटिंग स्टेप यू विल गेन द कॉन्फिडेंस टू डू द नेक्स्ट वन।
1: अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखिए, अटेनेबल गोल्स रखिए,
0: और इम्पॉर्टेंट काम को पहले कीजिए। कीप योर प्रायोरिटीज क्लियर।
1: बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी, कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि परफेक्ट प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें आप प्लान्ड एक्शंस रखें।
0: और कभी कभी हम सक्सेस को सिर्फ टैलेंट से जोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत बार ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी प्लानिंग क्लियर होती है।
1: तो दोस्तों, आज से सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करने की कोशिश कीजिए,
0: क्योंकि बेहतर प्लानिंग ही सफलता का मूल आधार है। विद दिस पॉजिटिव थॉट, लेट्स टेक अ म्यूजिकल ब्रेक।
2: It's Valentine's Day.

0: तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज की। दोस्तों जब भी हम आज़ादी की लड़ाई यानी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो कुछ नाम हमारी जबान पर तुरंत आ जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस दौर में जब घर की दीवारों से निकलना भी मुश्किल था, तब कुछ ऐसी ख्वातीन, ऐसी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने पूरी ब्रिटिश एम्पायर की नींद उड़ा दी थी।
1: दोस्तों जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है तो अक्सर महिलाओं ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसी ने तलवार उठाई, किसी ने कलम, किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और किसी ने अपने बेटे तक देश के लिए न्योछावर कर दिए। आज हम उन्हीं वीरांगनाओं को याद करेंगे जिन्होंने ये साबित किया कि नारी सिर्फ शक्ति नहीं, परिवर्तन की पहचान है।
0: अगर वीरता का नाम पूछा जाए अंजलि, तो सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वो है रानी लक्ष्मी बाई का।
1: हाँ।
0: मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया था।
1: 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई। और सोचिए दोस्तों, जब रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर तलवार लेकर मैदान में उतरती हैं तो उस समय महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित माना जाता था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उस सोच को तोड़ दिया।
0: उन्होंने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधा और युद्ध भूमि में उतर गईं। उनकी बहादुरी देखकर अंग्रेज अफसर भी हैरान रह गए थे। आज भी जब वीरता की बात होती है ना दोस्तों, तो ये रानी हर दिल में जिंदा है।
1: दोस्तों गौर करने वाली बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, देश के हर कोने से आवाज़ उठ रही थी और ऐसी ही एक बुलंद आवाज़ थी बेगम हजरत महल की। लखनऊ की इस बहादुर महिला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और जब नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया तब उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने लोगों को एकजुट किया, सेना तैयार की और अंग्रेज़ों को चुनौती दी।
0: अब बात उस महिला की जिन्हें लोग प्यार से भारत कोकिला कहते हैं, एक पोएट, एक स्पीकर और एक फियरलेस लीडर, सरोजनी नायडू। उनकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि लोग प्रेरित हो जाते थे। उन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकलने और आंदोलन में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया।
1: शॉर्ट मार्च हो या कांग्रेस मूवमेंट, हर जगह उनकी मौजूदगी लोगों को नई ऊर्जा भर देती थी। वो कहती थी, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। और सच में उन्होंने अपने शब्दों और संघर्ष से लोगों को जागरूक किया।
0: अब बात करते हैं त्याग और सेवा की मिसाल कस्तूरबा गांधी की।

0: ये सिर्फ महात्मा गांधी की पत्नी नहीं थी, वो आंदोलन की मजबूत साथी थी। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जेल गईं और महिलाओं को जागरूक भी किया। उनका जीवन सादगी, सेवा और सेक्रिफाइस का प्रतीक भी माना जाता है।
1: अब जिक्र उस महिला का जो भारत में पैदा नहीं हुई लेकिन भारत को अपना देश मान लिया, एनी बेसेंट। उन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू किया और भारतीयों को सेल्फ रूल के लिए इंस्पायर भी किया। एजुकेशन के क्षेत्र में उनका योगदान भी बहुत बड़ा था। उन्होंने लोगों को समझाया कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए।
0: 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से गूंज रहा था, और उसी समय एक महिला ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। वो थी अरुणा आसफ अली। उनकी बहादुरी ने युवाओं में जोश भर दिया। दोस्तों सोचिए, उस दौर में महिला अंग्रेजों का विरोध करना
1: मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना
0: बिल्कुल
1: था। लेकिन इन वीरांगनाओं ने कभी डर को खुद पर हावी नहीं होने

0: उन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू किया और भारतीयों को सेल्फ रूल के लिए इंस्पायर भी किया। एजुकेशन के क्षेत्र में उनका योगदान भी बहुत बड़ा था। उन्होंने लोगों को समझाया कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए।
1: 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से गूंज रहा था, और उसी समय एक महिला ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। वो थी अरुणा आसफ अली। उनकी बहादुरी ने युवाओं में जोश भर दिया। दोस्तों सोचिए, उस दौर में महिला अंग्रेजों का विरोध करना
0: मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना
1: बिल्कुल
0: था। लेकिन इन वीरांगनाओं ने कभी डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आज हम रेडियो पर बात कर रहे हैं ना, तो रेडियो से जुड़ी एक वीरांगना को कैसे भूल सकते हैं, उषा मेहता। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाया। जब अंग्रेज खबरों पर कंट्रोल कर रहे थे, तब उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो से देशभक्ति के संदेश पहुँचाती थी। सोचिए, एक छोटी सी लड़की, लेकिन हौसला इतना बड़ा कि पूरी ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी।
1: अब बात आज़ाद हिंद फौज की शेरनी लक्ष्मी सहगल। सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई। ये उस समय की पहली वुमेन मिलिट्री यूनिट थी। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि लीडरशिप भी कर सकती हैं।
0: दोस्तों, इतिहास की किताबों में कुछ नाम बड़े अक्षरों में लिखे गए, लेकिन हजारों महिलाएं ऐसी भी थीं जिनके संघर्ष की कहानी कम लोगों तक पहुंची। लेकिन इन सभी महिलाओं ने अपने अपने तरीके से देश की आज़ादी में योगदान दिया। किसी ने आंदोलन किया, किसी ने जेल की दीवारें भी देखी, और किसी ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी।
1: दोस्तों, आज हम खुशी से खुली हवा में सांस लेते हैं, अपनी बात खुलकर कर पाते हैं, या ये कहें कि हम अच्छे से अपनी सांस ले पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ये सब यूं ही नहीं मिला दोस्तों। इस आज़ादी के पीछे अनगिनत कुर्बानियां हैं। आज का प्रेरणापुंज उन सभी वीरांगनाओं को सलाम है जिन्होंने अपने सपनों से पहले अपने देश को चुना।
0: तो दोस्तों, ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट। मगर ज्योति, याद है ना आज क्या है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आज है सैटरडे।
0: यस
1: दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट आज की शाम आपके नाम का। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और हुनर से लाखों दिलों में जगह बनाई।
0: और आज की शाम समर्पित है उस इंसान को जिसे लोग सिर्फ एक्टर नहीं, एक दौर मानते हैं।
1: एक ऐसा अभिनेता जिसने रिजेक्शन सहा, सभी ने कहा कि इसके साथ काम कौन करना चाहेगा, पर ये बने सदी के महानायक।
0: जी हाँ, जब वो जहाँ से खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हम बात कर रहे हैं, आपने सही समझा, आज की ये शानदार शाम समर्पित है भारतीय सिनेमा के शहंशाह महानायक अमिताभ बच्चन के नाम।
1: बिल्कुल, तो अंजलि, क्यों ना इनके बारे में आगे बात करने से पहले इनके कुछ कानों पे थिरक लिया जाए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन की। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इनका जन्म हुआ था
1: 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इनके पिता सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी थे और इनकी माता तेजी बच्चन थी।
0: घर में साहित्य, कविता और कला का माहौल था, लेकिन शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लंबा सा लड़का एक दिन भारतीय सिनेमा का शहंशाह कहलाएगा।
1: और मजेदार बात पता है दोस्तों, आज जिस आवाज पर लोग फिदा हैं, उसी आवाज को कभी ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। कहा गया कि उनकी आवाज रेडियो के लिए सुटेबल नहीं है।
0: सोचिए, जिस आवाज को आज सुनने के लिए लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं, उसी आवाज को कभी रिजेक्ट किया गया था। यही तो जिंदगी है दोस्तों, कभी कभी दुनिया आपकी वैल्यू बाद में समझती है।
1: मुंबई आने के बाद स्ट्रगल आसान नहीं था। लंबा कद, अलग आवाज और ट्रेडिशनल हीरो जैसी पर्सनालिटी ना होना, इन सब की वजह से उन्हें कई फिल्मों में रिजेक्ट किया गया।
0: कई रातें उन्होंने दोस्तों के घरों में गुजारी, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
1: ये बात तो अभी हम सब जानते हैं कि फिल्म सात हिंदुस्तानी से बच्चन साहब ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की।
0: जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि इनकी आवाज़ को एक नहीं बल्कि दो दो बार ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। पर हैरानी की बात इस बात की होती है कि फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पहली कमाई हुई वॉइस ओवर से ही।
1: जी हाँ, फिल्म भुवन शोम में उन्होंने नरेशन किया था, जिसके लिए उन्हें 300 रुपये मिले थे। कलकत्ते में नौकरी छोड़ जब ये मुंबई में आए, कई रातें इन्हें मरीन ड्राइव पर ही बितानी पड़ी।
0: वक्त यूं बीता कि ये बतौर एक्स्ट्रा एक फिल्म में एक्टिंग करने गए थे। ये भीड़ में खड़े थे और इन्हें थोड़ा सा मेहनताना मिलना था। इससे पहले ये बतौर एक्स्ट्रा काम कर पाते, लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को देख लिया और कहा कि तुम बड़े बड़े किरदारों के लिए बने हो, छोटे छोटे रोल्स या क्राउड सीन में खड़े होकर तुम करियर नहीं बना पाओगे। और शशि कपूर ने सही ही कहा था, जो आगे हुआ वो हम सभी जानते हैं।
2: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. What?

0: वाली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट।

0: वेलकम बैक दोस्तों. अमिताभ बच्चन की जब बात आती है तो इनके गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी की बात सबसे पहले आती है, जिन्होंने इन्हें फिल्म आनंद में साइन किया था.
1: ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स ने फिल्म जंजीर की कहानी को रिजेक्ट कर दिया था और किसी तरह घूमते फिरते ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आ गई.
0: बस यहीं से ये कहानी बदल गई. उनका एंग्री यंग मैन वाला अंदाज लोगों के दिलों में उतर गया. उस दौर में फ्रस्ट्रेटेड यूथ को अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज
1: दिखने लगी थी. हाँ, और इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की लाइनें लग गईं. दीवार, शोले, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, हर फिल्म के साथ उनका स्टारडम बढ़ता गया. और डायलॉग्स, अरे डायलॉग्स तो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए. क्यों ज्योति?
0: बिल्कुल. आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? और सामने से जवाब आता है, मेरे पास माँ है.
1: या फिर वो अंदाज जब पूरा थिएटर तालियों के साथ गूंज उठता था, रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. और वो आइकॉनिक स्टाइल, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. और ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं थे दोस्तों, पूरे थिएटर की एनर्जी थे.
0: लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं होती, उसमें मुश्किल चैप्टर्स भी आते हैं. 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ.
1: एक फाइट सीन में उन्हें गंभीर चोट लगी. स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था. एक तरफ डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे और दूसरी ओर लोग मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे, हवन हो रहे थे और न्यूज़पेपर्स में हर दिन उनकी हेल्थ अपडेट्स छपती थी.
0: और फिर एक समय ऐसा भी आया जब उनकी कंपनी ABCL को भारी नुकसान हुआ. करोड़ों का कर्ज, काम बंद और करियर ऑलमोस्ट खत्म मान लिया गया था.
1: लेकिन दोस्तों, यहीं से असली अमिताभ बच्चन सामने आते हैं. उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से शुरुआत की और फिर आया वो शो जिसने टेलीविजन का इतिहास बदल दिया, कौन बनेगा करोड़पति.
0: देवियों और सज्जनों, बस इतना सुनते ही पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ जाता था. KBC ने सिर्फ उनका करियर रिवाइव नहीं किया बल्कि उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया.

0: दोस्तों, सम्मानों की बात करें तो अमिताभ बच्चन को भारत सरकार द्वारा देश के सबसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2015 और भारतीय सिनेमा में उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 में।
1: इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जीते, चाहे ब्लैक हो, पा या पीकू, हर दौर में उन्होंने खुद को नए रूप में साबित किया।
0: इतनी सफलता के बाद भी इनकी ह्यूमिलिटी लोगों को इंस्पायर करती है। वो आज भी अपने फैंस के लेटर्स पढ़ते हैं, हर रविवार अपने घर जलसा के बाहर फैंस से मिलने आते हैं।
1: उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। शायद यही वजह है कि 80 साल की उम्र के बाद भी वो आज की जनरेशन के साथ रिलेट कर पाते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं।
0: एक रिजेक्टेड वॉइस से लेकर महानायक बनने तक का सफर सिर्फ टैलेंट का नहीं, हिम्मत, डिसिप्लिन और नेवर गिव अप एटीट्यूड का सफर है। तो दोस्तों, लास्ट में आपके लिए वो गाना जो उनके ही पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, हम हर रोज आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं और हमारा कल का सवाल था कि भीम टेका मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है कि भीम टेका मुख्य रूप से आदि मानवों द्वारा बनाई गई प्रागैतिहासिक गुफाओं और शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
1: दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आप अपना जवाब दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर और हमारा व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। और इसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आप हमको अपने रिव्यूज़ भी सेंड कर सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
0: और मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान

0: भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 9:30 बजे विज्ञान भारती कार्यक्रम होगा। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8 बजे आज हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम, जिसमें आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के संपादित अंश आप सुनेंगे। 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा प्रवीण शेखर की लिखी वार्ता, डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियां। 7:45 पर रमा सेन के स्वर में गीत और वचन होंगे। सबरस का समय होगा रात 8:30 बजे का। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नज़र। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम, सुनिएगा गजलों पर आधारित कहकशा। रात 8:30 बजे आज इतवार है कार्यक्रम में नरेश मिश्र की लिखी झलकी प्रसारित होगी, बाज आए नीम हकीमों से। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में राणा प्रताप सिंह से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत होगी, औद्योगिक फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग विषय पर। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर पीयूष सक्सेना की वार्ता सुनिएगा, एंजाइना को समझें। 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में राधिका मोहन मोइत्रा का सरोद वादन होगा। 9:50 पर कल सुबह सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी मनीषा निर्खी, इनके स्वर में आप सुनेंगे गीत और भजन। और शाम 7:45 पर इसी कार्यक्रम में अरुण गुलवाड़ी के स्वर में गीत और भजन होंगे। लोक माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 10:05 पर, कलाकार होंगे शोभा लाल और उनके साथी और शैल सिंह। बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ होगा 11:15 पर। दिन में 12:15 बजे सुनिएगा पंडित शारदा सहाय का तबला वादन शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। दिन में 2:30 बजे लोकगीत प्रसारित होंगे, कलाकार होंगे ब्रजभान यादव और उनके साथी सुशीला देवी और सुभाष चंद्र और उनके साथी। शाम 5 बजे ग्रामीण बच्चे सुनेंगे अपना बाल गोपाल कार्यक्रम, जिसमें नीरज कुमार तिवारी की बाल कविताएँ प्रसारित होंगी। शाम 5:15 पर युवाड़ी कार्यक्रम में हेलो युवा कार्यक्रम होगा। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता, आधुनिक हिंदी साहित्य में ग्राम में जीवन। ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 8 शाम 6:20 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकोनविंशतितमे आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्राधिकेभ्यः युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये एकलक्ष शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथि एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यु प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अति उच्च स्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकोनविंशतितमे आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्राधिकेभ्यः युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे सप्तचत्वारिंशत् विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्णदेशात् चयनिताः एते नूतन कर्मचारिणः रेलमन्त्रालये गृहमन्त्रालये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये उच्चशिक्षा विभागे च इत्यादिषु विभिन्न मन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वमस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिककार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकास यात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतन वृत्त्यावसाराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमपर्यन्तं भारतं विकसितभारतं कर्तुं दृढसंकल्पेन कार्यं करोति।
1: आज हर भारतीय एक बड़े

0: वैश्विक स्तरे च न्यूनम इति मूल्यांकितम अस्ति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् अधुना यावत् द्वयशीति प्रकरणेषु सप्त जनाः मृताः, परन्तु वास्तविक प्रकोपः एतस्मात् बृहत्तरः भवितुं शक्नोति, यतः प्रायः 50-अधिक-7,000 संदिग्ध प्रकरणानि, 77-अधिक-1,000 संदिग्ध मृत्यवः च पंजीकृताः सन्ति। आईपीएल 20 प्रतिविंशति क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। स्पर्धेयं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात।

0: केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम। हम कहे हो रघु भैया का हाल चाल।
1: हाँ बोला भैया, हाल चाल ठीक बाटे। मुला भैया देखा गर्मी बहुत बढ़ गए बाटे भैया।
0: बिल्कुल भैया, गर्मी तो है बेहिसाब पड़त बाटे कि भैया घरे से निकले के जो ना मना ही नहीं कर।
1: बिल्कुल भैया, तरको निकला मैं इतनी तेज धूप रात भैया है।
0: बिल्कुल भैया, देखा यह गर्मी के मौसम जो ना है हमका सबके एहसास करावत है कि हमका सबके लिए पेड़ पौधा कितना जरूरी बा।
1: हाँ भैया, हाँ क्या क्या
0: अगर भैया देखा गर्मी ना पड़े ना तो हम जो ना इंसान भूल जाई थी कि हमरे आसपास के पर्यावरण के का महत्ता बटे।
1: बिल्कुल
0: अब
1: भैया,
0: जब दोपहरे में या कहूँ निकला तो धूप जब लागत है तो ही हो कहूँ पेड़ के
1: हाँ
0: छाव
1: भैया,
0: मिल जाए
1: कहूँ बड़ा पेड़ मिल जाए भैया, थोड़ा
0: भैया
1: छाया ले
0: तनिक
1: लिया।
0: आराम कर
1: हाँ
0: ले।
1: सुस्ता है ली थोड़ा भैया।
0: लेकिन ई नहीं सोचित भैया कि ई पेड़ जो ना है जो हमारे बड़े बुजुर्गन लगाए रहने हैं,
1: हाँ भैया,
0: आज हम लोग का करते हैं, आज हम लोग का पेड़ पौधा लगावत है कि
1: हाँ
0: अपन आवे वाली पीढ़ी जो ना है ऐसे अगर धूप गर्मी पड़े तो कम से कम छाहे में
1: हाँ,
0: रुक
1: कुछ
0: के
1: देर बैठ के आराम कर सके
0: सुस्ताए
1: भैया।
0: ले, आराम कर ले। है
1: बिल्कुल, हाँ,
0: भैया देखा ई गर्मी तो अपन समय से पड़बे करी, लेकिन जो हमार सबके फर्ज बाटे भैया कि हमहू लोग जो ना है अपने तरफ से एक बचाव के लिए का कह सकी थी और अपन जो आवे वाली पीढ़ी बा उहू के जो ना है कैसे जो ना है ओका भाई ओकरे जरूरत के हिसाब से माहौल ना देबा तो कैसे वो जो ना है रही। हाँ
1: बिल्कुल भैया, आज समय जो गर्मी पड़त बाटे ओके सबसे बड़ा कारण बाटे पेड़ के अंधाधुंध कटाई भैया।
0: बिल्कुल भैया, देखा कटाई होती है और पेड़ लगता हूँ वहाँ, लेकिन भैया क्या होता है ना देखा पेड़ कौन लगावा कि जिसमें आपके फल भी मिले
1: हाँ, फल
0: और
1: फूल लकड़ी भी मिले।
0: साथ में जो ना है ओके छाया भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले। तो कहा है कि मतलब भैया देखा अब यही समय बटे कि भैया अभी बाग बगीचा लगावे के जो ना
1: हाँ
0: है
1: तैयारी कर लें अभी भैया लोग।
0: बिल्कुल भैया जौन किसान भैया अरे देखा अब खेती किसानी के काम उतना जोरदार पे नहीं बटे
1: बिल्कुल,
0: तो अब ये कहा है कि यह समय आ है कि नए बागन के जो ना है तैयारी
1: हाँ
0: कर लें कि जो लगावे चाहत हैं तो के
1: हाँ
0: लिए गड्ढा वगैरह खोद के सारी तैयारी कर लें।
1: यौम भैया देखा बागवानी में कई तरह के पेड़ होते हैं भैया। कुछ लोग जो है लकड़ी के लिए व्यापार व्यापार करे बात पेड़ लगावा थे, कुछ लोग फल के लिए भी व्यापार करते हैं ना, तो के लिए
0: बिल्कुल
1: पेड़ लगाओ
0: बिल्कुल
1: थे। फल के लिए भी भैया जैसे आम के लगा लिया, महुआ के लगा लिया, तमाम पेड़ अमरूद के बाटे हैं।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल
1: लकड़ी के अगर व्यापार करे के बाटे भैया तो सागौन के बा हैं, यूकिलिप्टस के बाटे एक लगा लिया भैया, बहुत मुनाफा होता है।
0: बिल्कुल भैया देखा और जोन किसान भैया रहे बगीचा पिछले साल 2 साल पहले लगाए रहे हैं उन्हों के भी चाहिए कि देखा इस समय वो जो पेड़ हैं उनके छोटा रहा थी
1: हाँ,
0: तो ओहू के लिए भी बड़ा

0: जौन है
1: देखभाल करें।
0: साल 2 साल के जौन पेड़ होते हैं भैया, देखा ओहो के बहुत जरूरत होते हैं सर, ये गर्मी में तो बहुत विशेष जरूरत होते हैं,
1: हाँ,
0: तो ओकरे लिए जो ना है कोशिश करें कि जो ना है वो तरह व्यवस्थित करें।
1: जाली लगा दें भैया,
0: हाँ
1: ताकि
0: हाँ
1: बकरी गाय ना खा सके होगा
0: बिल्कुल,
1: बच्चा।
0: और उनका जो ना है पानी भी बराबर
1: हाँ
0: जो ना है सुबह शाम
1: हाँ हाँ
0: देते रहें।
1: समय पर उनका खाद पानी देते रहा, ताकि उनके बड़बड़ हो
0: बिल्कुल
1: अच्छे से।
0: बिल्कुल भैया, देखा और जो ना है अगर इस समय कोनो किसान भैया हरेन पंच भैया हरेन पेड़ पौधा लगाए हैं
1: अच्छा,
0: तो ओहू में जो ना है देखा पानी भरपूर दें
1: हाँ,
0: ये।
1: कह
0: हाँ
1: कह भैया गर्मी बहुत बाटे भैया।
0: और शुरू के 15 दिन तो भैया देखा पानी रोज दें और भरपूर दें, और फिर धीरे धीरे जो नहाए हफ्ता पे जो जैसे थोड़ा थोड़ा जब
1: हाँ,
0: हो जाए
1: पेड़ के जड़ पकड़ लिए
0: जड़
1: अच्छे से,
0: पकड़ ले तो
1: तब बीच बीच में देते हैं।
0: हल्का हल्का पानी दें, फिर 1 दिन छोड़ के जो नहाए पानी दें
1: बिल्कुल,
0: कि माटी सूखे ना पावे।
1: हाँ,
0: और दूसरा चीज़ भैया देखा छोटवार पेड़ हैं तो उनका सहारा खाती कोनो बांस या लकड़ी के जो नहाए या सुतली बांध के उनका सहारा दे दें ताकि
1: हाँ,
0: आंधी उंधी आवे तो उसमें वो गिरे ना।
1: हाँ बंधा रहा है वही में।
0: हाँ और खास करके जब ये मई जून में जो अगर पेड़ लगाए हैं ना तो इसमें क्या होता है कि भाई दोपहर के धूप से बचावे खातिर टाट या घास के छप्पर भी लगा दें
1: हाँ
0: ताकि जो डायरेक्ट जो सूर्य की रोशनी पड़ाते हैं वो पेड़ पौधा पे
1: हाँ
0: उतना होकर
1: पत्तियों का सूखा है ना
0: हाँ
1: भैया।
0: सूखे ना पावे। तो इस समय भैया एक एक व्यवस्था कर सकती,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और साथ में थाला में जो है जैसे सूखी घास डाल देने या कोनो पन्नी बिछाए दें ताकि
1: हाँ
0: ओके नीचे की नमी
1: बिल्कुल,
0: बनी
1: हाँ
0: रहे और खरपतवार ना हो ओके।
1: हाँ साथ साथ भैया बीच बीच में हमें कीटनाशक दवा छिड़काव करते हैं, ताकि उनके पत्ती कीड़े ना खाएं
0: बिल्कुल भैया,
1: भैया।
0: जैसे जो अब किसान भैया रहे इधर बीच में पेड़ आजकल में लगाए हुई हैं ताकि देखा यह समय आते बरसात के पहले जो है गर्मी में ही बाग बगीचा के लिए जो है सारी तैयारी
1: कर
0: होते।
1: लें।
0: और जैके भैया रहे के जैसे बहुत साल 2 साल के हो गया हैं तो उनमें थोड़ा सा कटाई छटाई कर लें,
1: हाँ,
0: कीट के सुरक्षा कर लें, उनमें थोड़ा खाद पानी डाल दें,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: निराई गोड़ाई के जो उनमें काम हो ओका कर लें। तो ये तरीके से जैसे कहा है ना भैया देखा कि जो 2 से 3 साल के तक के जो पेड़ के ध्यान दे दे ही तो एक
1: हाँ,
0: बार पेड़ तैयार हो जाए तो भैया फिर ओके जो जो ना है
1: देखा
0: सारा
1: भैया पेड़
0: परिणाम।
1: जो है इंसान के बहुत अच्छे मित्र होते हैं भैया। देखा ये फूल तो देते हैं, फल भी देते हैं, साथ में छाया भी देते हैं ना। अब पेड़ जब सूख जाता है तो लकड़ियों देते भैया, बहुत काम की चीज़ है बेटा भैया।
0: बिल्कुल भैया, देखा भैया और एक चीज़ है कि बहुत सारे दिक्कत का आवत है कि पौधा सूखे लागत है।
1: हाँ
0: अब सोचते हैं भैया हम खाद पानी सब तो देते ही
1: हाँ
0: लेकिन तब हमारा पौधा सूखता है,
1: हाँ
0: तो उसमें ये देख लें कि कहूँ जड़ में दीमक तो नहीं लगता है या
1: हाँ
0: पानी कमी यहाँ है तो थाला में पानी भर के देखें, अगर बुलबुला आवता है तो एक ही समझ लें कि इसमें दीमक है
1: हाँ
0: और दीमक के जो ना है ओके दवा के जो ना है छिड़काव करके ओके
1: बिल्कुल।
0: उपचार करें। और जैसे अगर मान लें पत्ता पीला पड़ता है
1: हाँ,
0: तो एक ही मतलब है कि भैया देखा वो पौधा में नाइट्रोजन की कमी बटे।
1: अच्छा,
0: हाँ तो उसमें जो ना है नाइट्रोजन कमी से जो ना है वो पत्ता पीला हो लगा थे तो
1: अच्छा
0: उसमें 2% तक जो ना है यूरिया के जो ना है स्प्रे कर दें
1: अच्छा
0: पानी
1: अच्छा
0: मिला के तो उससे जो ना है उपचार हो सकते।
1: अच्छा
0: और साथ ही साथ भैया देखा जो ना है बहुत सारे घूमता जानवर रहते हैं तो उन्हों से बचावा क्या है तो वो तरफ ओकरे लिए जो ना है बाड़ बंदी कर दें, कटीली जो कोनो ऐसे हो कि जानवर उसे दूर भागें या तिरपाल लगा दें।
1: अच्छा।
0: ठीक है भैया, तो ये सब जो ना है देखा अगर कह ले ही तो जो ना है अगर 3 साल तक कम से कम होकर देखभाल कर ले तो बाग जो आपके
1: अच्छा,
0: जड़ जो ना है मजबूत हो जाते
1: अच्छे जड़
0: तो
1: पकड़ ली उसने।
0: हाँ अच्छे से जड़ पकड़ लेते। तो कहा है कि मतलब भैया कि देखा ये समय यहाँ है नए बागन के देखभाल के बहुत विशेष देखभाल के, तो किसान भैया हरेन एक के जो ना है विशेष ध्यान दें।
1: बिल्कुल
0: भैया
1: बिल्कुल,
0: हम कहे देखा रघु भैया आज अपने पंचायती में का कहा है तनिक बताए देता तो फिर जो ना है ताकि पंचो भैया हरेन
1: अच्छा।
0: हाँ इंतजार कर रही
1: तो
0: का
1: भैया
0: कहा
1: देखा
0: सुना
1: आज
0: जाए।
1: शनिवार बाटे, और हर शनिवार जो है परिवार कल्याण की बात होती है।
0: बिल्कुल
1: आज
0: भैया
1: भैया विषय बाटे आँखों की सामायिक बीमारियां एवं उनका निदान। डॉक्टर शिखा से ब्रजेंद्र नारायण जी की बातचीत बाटे सुने जाइए। मुला भैया जब तक देखा पंचायती में कुछ गीत गौने नहीं हो, भैया देखा पंचायती कुछ नीक नहीं लगा था।
0: बिल्कुल भैया, देखा कहा आप जो ना गीत गाओ नहीं हमारो मन होत रहा तो देखा भैया के आज गाओ नहीं सुनो भैया।
1: भैया देखा आज लोकगीत बाटे मानिक चंद पटेल और साथी के, विकास गीत बाटे हम कहीं तू सुना किसान भैया सुने
0: बिल्कुल भैया, अब लोकगीत सुनवाए दिन जाए तो फिर जो ना बात बत कही
1: होत रही।
0: होत रही।

0: हाँ भैया।
1: भैया देखा, भैया लोकगीत सुना गाओ भैया, मानिकचंद पटेल और साथी के,
0: बहुत
1: बड़ा नीक लाग
0: बढ़िया
1: रहे हैं।
0: भैया, बहुत बढ़िया विकास गीत सुनाए न, इतना नीक लाग
1: हाँ भैया।
0: भैया। देखा हम लोग जो नहाए किसान मनई है, खेती किसानी के बात बत कही तो हो थे। एक बात भैया जो नहाए हमारे मन में रहा कि
1: हाँ बोला भैया।
0: देखा हम लोग जो नहाए जितना आधुनिकता की तरफ भागत है उतना ही कहूँ ना कहूँ ओके हम लोग जो नुकसानों देखा थे।
1: सही कहा भैया।
0: तो अगर हम लोग अपने परंपरा से भी जुड़ा रही ओकरे साथे साथे आधुनिकता के सहारा ले तो ओकरे दोनों के मिश्रण से जो है देखा हम लोग ज़्यादा लाभकारी चीज़ कह सकी थी।
1: हाँ
0: ऐसे भैया देखा खेती किसानी में भी बटे कि अब
1: बिल्कुल
0: देखा
1: बिल्कुल।
0: बहुत सारे किसान भैया हैं ट्रैक्टर से जो है जुताई करता ठीक है, हम कही थी आज के समय की ज़रूरत बटे, लेकिन जैसे खाद पानी है
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: वह में जो ना आप रासायनिक खाद के प्रयोग कर लेता है तो कहूँ ना कहूँ हमारे सबके स्वास्थ्य पे भी ओके असर पड़ता है, माटी के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। ऐसे में भैया देखा जो उन परंपरागत खेती रही ना जो हमारे दादा परदादा के समय चली आवत रही,
1: हाँ गोबर के खाद भैया।
0: हाँ वो देसी ज्ञान के
1: हाँ
0: ओके जो ना है अगर हम लोग अगर भूल जाबे तो फिर आवे वाली पीढ़ी जो ना है उसी वंचित हो जाए।
1: सही कहा
0: तो
1: भैया।
0: हमका सबके चाहिए कि वह जो ना अपन परंपरागत खेती बा ओहू के भी अगर हम लोग अपनाए के काम करी तो ज़्यादा हम लोग के लिए लाभकारी है।
1: देखा भैया,
0: देखा
1: गोबर के खाद से क्या होता है ना, माटी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, माटी में नमी भी बनी रहती है।
0: भैया देखा खाद है नहीं बीज भी जो है देसी
1: हाँ
0: बीज जो घर के रखा हुआ बीज है या
1: हाँ
0: कीट नियंत्रण खातिर या देखा पहले नीम धतूरा या गौमूत्र या राख के प्रयोग होता रहा या ओके अलावा जो सिंचाई के लिए जो है बारिश पे भी
1: निर्भर रहते हैं,
0: हाँ हाँ
1: कुआं तालाब यही सब पे निर्भर रहते हैं भैया।
0: तो अब सबसे सब बड़ी बात भैया परंपरागत खेती में का होता रहा ना कि जो मिश्रित खेती होती रही
1: हाँ
0: उसे का रहा कि अगर एक साथ तीन से चार फसल लगा है
1: अच्छा।
0: मान लिया कोनो फसल नहीं तैयार हो पा हमें नुकसान हो गया तो दूसर की फसल से जो उन्हें सहारा
1: भरपाई
0: मिल
1: हो
0: जाता
1: जाती
0: रहा।
1: है भैया।
0: तो और दूसरी चीज़ का रहा कि उसी माटी के भी जो उन्हें संरचना बनी रहती रही। तो एक कहा कि मतलब है कि भैया देखा अपने किसान भैया रहने से कि थोड़ा सा परंपरागत खेती के भी जो ध्यान दें ताकि जो हमारे खेत के उर्वरा शक्ति है वो सब जो है बनी रहे।
1: कहे भैया देखा, एक साथ कई फसल लगाए इसका होता ना, कुछ फसल कम गहराई की जड़ की वाली होती है, कुछ फसल ज़्यादा गहरी जड़ की होती हैं, इससे जो है माटी की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहती है और माटी में बढ़िया ऑक्सीजन भी मिल जाता है।
0: बिल्कुल भैया। भैया देखा परंपरागत खेती में का है ना कि लागत कम है और कम लागत पे ज़्यादा हम लोग के सबसे बड़ा है कि जो माटी है वो
1: अच्छा
0: सुरक्षित
1: अच्छा
0: है, जौन उपज है वो सुरक्षित है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जौन कि दोनों सेहत के लिए
1: हाँ
0: लाभकारी है। तो
1: साथ
0: कहा
1: भी अगर गोबर खाद पड़ी बाटे भैया तो जो अन्न हुई वो अच्छा हुई भैया, क्योंकि बाजार में अच्छा मांग भी रहते हैं।
0: बिल्कुल भैया। तो कहा है कि मतलब है कि देखा आधुनिकता के साथ साथ जो है अपने अगर परंपरागत खेती पे भी जो है
1: हाँ
0: हम लोग
1: अपन देसी खाद रहे
0: रही
1: हैं।
0: हाँ तो ओहू से जो है हम लोग के किसान भैया इनके लाभ मिल सके थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भैया देखा एक चीज़ तो रहा कि अब हम लोग बात करते गर्मी इतनी तेज़ पड़ती है और जब निकला तो जैसे लगा तो देखा कि आग जो है अगल
1: हाँ
0: बगल
1: हाँ
0: जो है जलत यह है हम लोग आगे के आगे पीछे
1: बिल्कुल।
0: चलत है।
1: और शरीर भैया एकदम सुस्त हो जाते हैं
0: बिल्कुल
1: दुकान।
0: भैया। तो ए में तमाम तरह के जो है बीमारी हम लोग के लगाई के जो है बना रहा संभावना, लेकिन ए में सबसे ज़्यादा दिक्कत आवत है कि आँख के बीमारी के जो है
1: बिल्कुल। हाँ
0: हाँ अक्सर जो नावत भैया देखा आँख लाल हो गई है और आँख उठी आए बटे तो ये अक्सर ही गर्मी में होते जो है जलन होए लगा थे। तो हमका लगा कि आज भैया देखा परिवार कल्याण के बाद बटे तो आज यही विषय पे ऐसा जो है अपने किसान भैया इनके सुनवावा जाए
1: अच्छा।
0: ताकि उनका जो नहाए जानकारी मिल जाए कि जो नहा अगर कोनो ए समय आँख के संबंधित कोनो बीमारी हो तो ओपे का उनका निदान करे के हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: देखा आज परिवार कल्याण के बाद में एक विषय है आँखों की सामयिक बीमारियाँ एवं
1: एवं
0: उसका निदान,
1: अच्छा
0: ए पे डॉक्टर शिखा
1: सर।
0: बहनी से जो नहा ब्रजेंद्र नारायण भैया बातचीत करे हैं। तो
1: अच्छा।
0: आवा हम लोग सुनवाए दिन जाए और किसान भैया भी सुने ताकि उनके कुछ लाभ ले सकें।
1: सुनवा

0: अरे भैया,
1: किसान भाइयों, परिवार कल्याण की बात में आज हम बात करेंगे आँखों की सामान्य समस्याएं और उनके निदान पर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं रेलवे अस्पताल प्रयागराज के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा यादव। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आँखें हमारे जीवन का, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है।
2: जी
1: आँखें अगर ना हो तो दुनिया कितनी वीरान, कितनी नीरस, कितनी बेरंग लगेगी, ये किसी नेत्रहीन से पूछा जा सकता है।
2: जी बिल्कुल
1: ऐसे में आँखों की रक्षा, उसकी देखभाल और अगर कोई समस्या है तो उसके लिए तत्काल निदान बहुत आवश्यक हो जाता है।
2: जी
1: आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ग्रामीण भाइयों से कि आँखों का, एक डॉक्टर की हैसियत से, आँखों का क्या महत्व है हमारे जीवन में? कुछ इस विषय में थोड़ा बताइए।
2: हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी जो आम आँखों में जो दिक्कतें होती हैं और उसके उसकी उसके लिए जो लापरवाही हम लोग कर लेते हैं कि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती हैं।
1: जी
2: जैसे सबसे कॉमन आपने सुना होगा आग जो आ जाती है, जो हर किसी को कभी ना कभी हुआ है। तो वो ज़्यादातर इसलिए होता है कि घर में किसी एक को हुआ है, जैसे माता पिता को हुआ या भाई बहन को हुआ है,
1: जी
2: और उन्होंने कुछ हाथ लगाया है, अपने हाथ वाथ साफ नहीं किए, आँख से मल लिया, फिर कपड़े में लगा दिया टावल से, और वही फिर दूसरा बच्चा यूज़ कर रहा है, तो उससे दोनों बच्चों को हो जाएगा घर में। और फिर उसके लिए करेंगे वो लोग कि कोई बगल में कोई दवाई की दुकान है तो वहाँ से जाके दवा खरीद लेंगे, और वो दवाइयाँ वो सस्ती देते हैं, तो
1: जी
2: क्योंकि उनमें स्टेरॉइड होता है, तो जो स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी सस्ती मिलती हैं। उससे लगेगा कि हाँ तुरंत आराम हो गया है, मतलब लालपन नहीं रहेगा और बच्चे को थोड़ा सा आराम रहेगा, लेकिन वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है,
1: जी
2: तो वो आगे चल के जो पुतली है हमारी काली वाली पुतली उस पर इन्फेक्शन हो जाता है,
1: हाँ
2: और जिससे अंधे भी हो सकते हैं हम।
1: जी
2: तो
1: जी
2: सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम है।
1: यानी कि जो खुद से
2: हाँ
1: इलाज करवा लेते हैं लोग
2: हाँ
1: या
2: हाँ
1: फिर लापरवाही बरतते हैं, ये
2: हाँ
1: बहुत बड़ी
2: ये
1: समस्या है।
2: बहुत ग्रामीण एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेडिकल कॉलेज में हमारे आते थे पेशेंट्स जो आते थे, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम लेके आते थे कि वो
1: जी
2: लोकल दवाई ही ले लेते थे जो 16 रुपये 20 रुपये की मिल जाती है, लेकिन वो आगे
1: हाँ
2: चल के बहुत सीरियस प्रॉब्लम कर देता है।
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आँखों की समस्याओं की बात करें, यूँ तो बीमारियाँ बहुत हैं और उसके निदान भी बहुत हैं, लेकिन जो सबसे प्राथमिक बात है, आँखें बड़ी नाजुक अंग मानी जाती हैं और उसके लिए भगवान ने बहुत सारे सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। इसके बावजूद आँखों में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, कुछ इन्फेक्शन हो ही जाता है। ऐसे में आँखों की सर सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, तो किस प्रकार से आँखों को साफ करना चाहिए, या आँखों के अगर कुछ आँख में पड़ जाए तो उसका निदान कैसे हो, कैसे निकासी हो उसकी?
2: जैसे आँख में अगर कुछ चले जाता है, जैसे आप बच्चा खेल रहा है बाहर या हम लोग कहीं बाहर गए हैं, धूल मिट्टी चले जाए आँख में,
1: जी
2: तो आप सीधा पानी से उसको धो लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है आँख में तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। उसके बाद आप कुछ अपने से मत करिए, ना मलिए आँख को, ना हाथ लगाइए, ना टॉवल लगाइए,
1: हाँ
2: तो
1: हाँ
2: सीधा आपको जो आपके सबसे करीबी हैं डॉक्टर उनको जाके
1: जी
2: दिखाइए
1: जी
2: वहाँ
1: जी
2: पर।
1: जी यानी पानी जो है वो
2: हाँ
1: सबसे सुरक्षित है, पानी से
2: सुरक्षित
1: आंख
2: है,
1: धो लें।
2: धो सकते हैं। हाँ
1: और डॉक्टर साहब, कभी कभी होता है कि खेतों में लोग काम कर रहे होते
2: हाँ
1: हैं या घर में ही काम कर रहे होते हैं, खास करके महिलाएं काम करती होती हैं, तो आँखों में कभी कभी कीड़ा चला जाता है कोई,
2: हाँ
1: या फिर कोई चीज़ ऐसी चीज़ पड़ जाती है जो कि बहुत दर्द करती है और आदमी झट से आँखें मलने लगता है,
2: हाँ
1: तो
2: हाँ
1: उस स्थिति में क्या करना चाहिए?
2: उस स्थिति में भी यही करना है कि पानी का छींटे मारने हैं आँख में
1: हाँ
2: थोड़ा, या फिर जैसे हाथ में पानी रख के आँख उसमें थोड़ा सा डाल के इस तरीके से कि आपकी आँख में से अगर हो सके तो निकल जाए वो चीज़, और ना निकले तो फिर आप अपनी साइड से कुछ मत करिए,
1: जी जी जी
2: डॉक्टर से ही दवा लें फिर उस
1: हाँ
2: केस
1: हाँ
2: में।
1: हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, हम कुछ और सावधानियों की बात करना चाहेंगे। यूँ देखा जाता है कि आजकल स्कूलों में नियमित जांच की सुविधा दी जा रही है, बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वह नियमित रूप से जब भी जांच हो उस समय आप उपस्थित रहें और अपने आँखों की जांच करवा लें। अगर जांच हो गई तो कोई समस्या होगी तो वो तो पकड़ में आ ही
2: हाँ
1: जाएगी,
2: बिल्कुल
1: लेकिन बहुत बच्चे भाग जाते हैं इससे, डरते
2: जी
1: हैं कि पता नहीं
2: हाँ
1: क्या होगा। ऐसे में एक ये प्रश्न उठता है कि आँखों की जांच, जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं किसी
2: हाँ
1: कारणवश या जो भी कारण रहा हो, ऐसे में सारे बच्चों के लिए क्या आप सुझाव देंगे कि आँखों की जांच कब कब होनी चाहिए?
2: एक तो जैसे सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ बच्चे तो ज़्यादातर बच्चे तो 9 महीने के बाद ही होते हैं, लेकिन कुछ जो एकदम

0: छोटे नवजात शिशु जो होते हैं उनको ऑक्सीजन लगाई जाती है, ऊपर से ऑक्सीजन देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है उनको बचाने के लिए। तो उसकी वजह से जो आँख का डेवलपमेंट है उसमें असर पड़ सकता है,
1: हाँ
0: लेकिन उस चीज़ को भी हम रोक सकते हैं उसी जगह पे, अगर हम उसी टाइम पे उसको डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर उनका पर्दा चेक करेंगे, हर महीने बुलाएंगे उनको, और अगर ज़रूरत होगी तो लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एज निकल गई उनकी और बाद में पता चलता है, तो फिर उसका कुछ नहीं इलाज होता है।
1: जी,
0: तो ये नवजात शिशु में आपको खास करके ध्यान रखना
1: जो
0: होता
1: प्री
0: है,
1: मैच्योर बच्चे
0: प्री
1: हैं,
0: मेच्योर जो
1: जो 9 महीने
0: बच्चे
1: की
0: होते हैं, हाँ,
1: गर्भकाल से पहले पैदा हो
0: पहले
1: गए।
0: पैदा होते हैं, और उनको
1: जी
0: जिनको ऑक्सीजन लगती है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उनमें ज़रूर से आपको डॉक्टर को दिखाना है। आई स्पेशलिस्ट जो आँख के डॉक्टर हैं उनको ज़रूर से दिखाना है पर्दा चेक कराने के लिए।
1: जी। अच्छा, इसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर
0: हाँ
1: कोई उसे सामान्य समस्या नहीं आई आंखों की, फिर स्कूल गोइंग बच्चा जो है
0: हाँ
1: वो स्कूल में अगर जांच होती है तो ठीक, और नहीं होती है तो फिर क्या आप
0: तो
1: कहेंगे?
0: हर साल उनको दिखाना है पहली बात, ठीक है। खासकर अगर बहंगापन लगता है बच्चे को, तो जितना जल्दी हो सके उसको दिखाना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केसेस में चश्मे का नंबर होता है।
1: हाँ
0: और वैसे भी आपको रूटीन चेकअप कराना ही है, हर साल में एक बार तो कराना ही कराना होता है। क्योंकि होता यह है कि जैसे एक आँख में नंबर है और कभी कभी दूसरी आँख नॉर्मल होती है,
1: जी
0: तो बच्चा क्या नॉर्मल आँख से तो देख लेता है, तो उसको ब्लैक बोर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती देखने में, ऐसे तो सोचता है सब कुछ ठीक है। लेकिन जो दूसरी आँख जिससे नहीं दिख रहा है, वो धीरे धीरे सुस्त पड़ जाएगी आँख,
1: हाँ
0: फिर बाद में उसमें चश्मे का भी कोई असर नहीं पड़ेगा,
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: एक बहुत डेंजरस चीज़ हो जाती है फिर, कि एक आँख से दिख रहा है दूसरी से नहीं दिख रहा
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ यानी अगर प्रयोग नहीं होगा तो वो धीरे धीरे कम होती
0: कम
1: चली
0: होती
1: जाएगी।
0: जाती है उसकी
1: जी
0: असर।
1: जी
0: हाँ
1: इसलिए जांच अति आवश्यक
0: हाँ
1: है।
0: और उसका ट्रीटमेंट 7 से 8 साल तक होता है, उसके बाद फिर उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है।
1: हाँ, तो ग्रामीण भाइयों, इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब भी बच्चा अगर कभी भयंगापन देखता है, या कम देखता है, या आंखें गड़ा कर देखता है,
0: हाँ, या
1: या
0: आंखें
1: कोई
0: छोटी करके
1: छोटी
0: देखना,
1: करके देखता है, ऐसे में कुछ असामान्यता हो सकती है, और उसका तत्काल यही उपाय है कि आप बच्चे को लेकर तत्काल किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से दिखा लें, ताकि उसकी समय रहते इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, थोड़ी आगे की समस्याओं पर चलते हैं। जो हमारे युवा हैं, युवा अपने को बीमारियों से मुक्त समझता है, हर बात के लिए उसे कोई चिंता नहीं होती कि हमें कोई बीमारी होगी, क्योंकि उस समय सारे अंग उसके काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही युवावस्था की दशा पार होने लगती है, यानी कहें कि 35 से 40 साल के आसपास आता है, तब बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।
0: जी,
1: चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगती है, हो सकता है कि मोतियाबिंद डेवलप में होने लगा हो। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों अवस्थाओं में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो जैसे हम 40 की एज तक पहुंचते हैं, तो हमको नज़दीक का चश्मा लगने लगता है,
1: हाँ
0: तो सब लोग सोचते हैं कि कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप चश्मा लगवाइए नज़दीक का, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिस पर हम नहीं ध्यान देते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ
0: एक तो हो गया समलबाई हो गया है, जो कि आजकल बहुत ही आम हो गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक रोशनी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक पता नहीं चलता है इंसान को। अगर 5% 10% बचता है तो उसको सही दिखता है, और जब एकदम ख़त्म हो जाता है तो वो अंधे हो जाते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसके लिए है कि आपको, अगर खासकर आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम रही है, तो आपको हर साल चेकअप कराना ही कराना है। वैसे आप भले 2-3 साल में करा लें,
1: जी
0: तो उसमें पर्दे की जांच होती है, आँख की जो नस होती है उसका चेकअप होता है, और आँख का प्रेशर देखा जाता है।
1: जी
0: जैसे ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आँख का भी प्रेशर होता है, तो अगर वो बढ़ता है तो धीरे धीरे नस सूखने लगती है आँख की, और जब आप 50-60 साल के हो, अंधे भी हो सकते हैं उसकी
1: जी
0: वजह
1: जी
0: से।
1: जी जी डॉक्टर साहब, ये जो समलवाई आपने कहा,
0: हाँ
1: क्या इसी को काला मोतिया कहते हैं?
0: जी, यही काला
1: तो ये
0: मोतिया।
1: तो कहते हैं लोग कि अगर किसी को काला मोतिया हो गया
0: हाँ हाँ
1: तो फिर तो आंखें चली ही जाती हैं,
0: नहीं,
1: कहते हैं लोग, लेकिन
0: हाँ
1: अगर समय रहते जांच हो
0: हाँ
1: जाए तो बच सकती।
0: जी
1: और ये भी सुनने में आया है कि जितनी आंख काले मोतिया के चलते जितनी आंखों की रोशनी जा चुकी है वो फिर से नहीं
0: जी
1: आती,
0: बिल्कुल
1: तो जो
0: सही,
1: बची है उसे बचाना
0: उससे
1: आवश्यक
0: बचाना
1: होता है।
0: बहुत ज़रूरी होता
1: तो
0: है।
1: डॉक्टर साहब, कैसे आप व्यक्ति समझेगा कि वो सामान्य विजन का लॉस है या कि उसे समलबाई या काला मोतिया हो रहा है, इसकी क्या पहचान हो सकती है?
0: सामान जो समलबाई होता है, उसमें आपका धीरे धीरे
1: जी
0: साइड
1: जी
0: से नज़र कमज़ोर होने लगती है, लेकिन वो आम आदमी को इतना समझ नहीं आएगा।
1: हाँ
0: जब तक
1: हाँ
0: कि लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते हैं, तो वो नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर को ही दिखा के आपको समझ में आएगा कि किस वजह से है,
1: जी जी
0: और अगर आप सही टाइम पे करा लेंगे, तो आपका जो विजन है, जितनी रोशनी बची है, दवाइयाँ बराबर डालेंगे तो बची रहेगी।
1: जी जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसी का एक दूसरा पहलू, दूसरा रूप है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं,
0: जी
1: कटरेक्ट कहते हैं, और इसे लोग कहते हैं कि एज फैक्टर के साथ ये सबको होता ही है।
0: हाँ
1: जो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा खान पान है, उन्हें भी होता है, जो लापरवाह

0: है उन्हें तो होता ही है। ऐसे में इस पे बहुत सारे शोध भी हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ गई। पहले जैसे कैंप लगा के ऑपरेशन होते थे मोतियाबिंद का, अब शायद ही कैंप की आवश्यकता होती है, बहुत सुविधाजनक स्थिति आ गई। तो डॉक्टर साहब, ये कैसी समस्या है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, इसकी क्या पहचान है, क्या लक्षण है?
1: मोतियाबिंद में तो आपको दूर कर नजर कमजोर होगी, हो सकता है आपकी पास की ठीक भी हो जाए।
0: जी जी
1: कई लोग कहते हैं कि हमको पास का तो सही दिखने लग गया लेकिन दूर का कमजोर हो गया है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है।
0: हाँ।
1: दूसरा है कि जो गाड़ी की हेडलाइट वगैरह होती है उसके आपको चकाचौंध लगेगा, या कई बार हो सकता है कि धूप में आपको नहीं दिख रहा है या अंधेरे में नहीं दिख रहा है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो ये इसकी पहचान होती है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि मोतियाबिंद पकने का इंतज़ार नहीं करना है।
0: जी
1: ये बहुत बड़ा सबके दिमाग में रहता है कि मोतियाबिंद जब पक जाएगा तब इसका ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन जब पक जाता है तो डॉक्टर के लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है उसको ऑपरेशन ऑपरेट करना। जितना अच्छे रिजल्ट नॉर्मल स्टेज पे होता है, एकदम पके हुए के रिस्क ज़्यादा होते हैं,
0: जी जी जी जी
1: ज़्यादा उसकी मतलब दिक्कतें हो सकती हैं बाद में, ऑपरेशन के
0: जी
1: बाद
0: जी
1: भी।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो सर्जरी इसकी होती थी और बहुत ज़्यादा परेशानी भी महसूस
1: जी
0: होती
1: जी
0: थी आम आदमी को। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत
1: हाँ
0: हुए हैं
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: बहुत आसान हो गया। कुछ उनके विषय में हमारे श्रोताओं को
1: हाँ अभी
0: बताएं।
1: जैसे जो लेटेस्ट है वो फेको से करते हैं आजकल, ज़्यादातर डॉक्टर उसी से करते हैं।
0: जी
1: पहले तो बड़ा चीरा लगता था, बहुत छोटा चीरा लगता है, और वो मशीन द्वारा ज़्यादातर होता है।
0: हाँ।
1: जो लेंस है वो भी अच्छी क्वालिटी के आने लग गए हैं,
0: जी
1: तो इतना दिक्कत नहीं होती है ऑपरेशन जैसे पहले होता था कि दर्द वगैरह जो हो रहा है, लालपन होता था। आजकल कई कई डॉक्टर्स आजकल मतलब बिना इंजेक्शन के भी कर रहे हैं ऑपरेशन। जैसे अगर लग रहा है कि पेशेंट अपना ठीक से कॉपरेट कर सकता है तो आप बिना इंजेक्शन के भी कर सकते हो, तो वो दर्द भी नहीं होगा आपको।
0: जी जी जी
1: तो इतना उसमें कुछ डरने का नहीं है या घबराने का नहीं है। अगर रोशनी चली जाती है मोतियाबिंद की वजह से, वो ज़्यादा दिक्कत की बात है।
0: हाँ
1: ऑपरेशन कराना ठीक रहता है हमेशा,
0: जी जी जी और समय रहते
1: समय रहते टाइम पे ऑपरेशन कराना
0: जी
1: बहुत ज़रूरी है।
0: और ये जो आपने लेंस की बात की कि लेंस लग जाता है
1: हाँ हाँ
0: और लेंस भी बहुत आसानी से, वो फोल्डेबल
1: हाँ
0: लेंस आते
1: फोल्डेबल
0: हैं
1: लेंसेज आते हैं वो
0: जी,
1: लग जाते हैं।
0: तो लग जाते हैं और फिर आराम से व्यक्ति
1: हाँ
0: देखने भी लगता है।
1: हाँ
0: ऑपरेशन के बाद ज़्यादा अस्पताल में रुकने की भी आवश्यकता नहीं होती
1: नहीं
0: है,
1: मत,
0: जल्दी
1: हाँ
0: घर चला जाता है मरीज। तो यानी मोतियाबिंद अब उतनी बड़ी समस्या नहीं
1: उतनी
0: रही,
1: बड़ी समस्या
0: बस ये
1: नहीं
0: है
1: है,
0: कि उसे समय पर
1: समय पे
0: इसका
1: उसका ऑपरेशन कराना
0: जी
1: ज़रूरी
0: जी जी
1: है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हम चलने से पहले अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहेंगे कि आँखों की अगर कोई बीमारी नहीं है तो किस प्रकार की जीवन शैली आवश्यक है, और अगर बीमारी हो ही गई है तो किस प्रकार के खान पान, जीवन शैली और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करें, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके विषय में हमारे श्रोताओं को कुछ
1: अच्छा,
0: बताएं।
1: जैसे जो हमको ध्यान रखना है अपनी आंखों, एक तो धूल मिट्टी से बच के रहना होता है। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है डस्ट वगैरह से, तो आप चश्मा लगा के बाहर निकलिए अगर आपको धूल से एलर्जी है। दूसरी चीज़ है कि साफ़ सफाई रखनी है आँख की, जैसे मैंने बताया वो सब
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: होना
0: जी
1: चाहिए, है ना। और बाकी खान पान में जैसे हरी सब्जियाँ हो गई हैं जिसमें विटामिन ए रहता है,
0: जी जी
1: गाजर हो गया है, विटामिन ए बहुत ज़रूरी, खासकर बच्चों को भी बहुत देना ज़रूरी
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: वरना
0: हाँ
1: उसकी वजह से पर्दा कमज़ोर हो जाता है आँख
0: जी
1: का।
0: जी जी जी जी
1: और बराबर अपना चेकअप कराते
0: जी
1: हैं,
0: ये सबसे आवश्यक है कि समय समय पर
1: और
0: जो
1: खासकर
0: रूटीन।
1: शुगर वाले जो मरीज होते हैं उनको अपना पर्दा जरूर चेक कराना है,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ हाँ
1: शुगर में यह है कि
0: डॉक्टर साहब,
1: जल्दी।
0: हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी बताई।
1: हाँ
0: आज बहुत सामान्य बीमारी हो गई है, देश के बहुत बड़ी जनसंख्या जो है
1: हाँ
0: वो डायबिटीज और या फिर
1: ब्लड प्रेशर
0: ब्लड
1: से,
0: प्रेशर, ये दो समस्याओं से ग्रसित है, और कहते हैं कि इन दोनों बीमारियों का असर आंखों पे भी पड़ता है।
1: बहुत ज़्यादा।
0: तो
1: हाँ
0: कितना ये सजग होने की आवश्यकता है इन दोनों बीमारियों के समय
1: जैसे
0: में।
1: किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर का पता चलता है तो उसको सबसे पहले जाके अपने आई डॉक्टर को भी दिखाना है, नेत्र रोग को भी दिखाना है विशेषज्ञ को।
0: हाँ
1: तो उसमें आपका पर्दा चेक होगा आँख का,
0: जी
1: अगर आपका मतलब साल में एक बार कराना ही कराना है, क्योंकि उसमें आँख में ब्लड आ जाता है। तो अगर
0: जी
1: शुरुआत की स्टेज है तो उसका लेज़र से ट्रीटमेंट हो सकता है,
0: हाँ
1: लेकिन अगर बहुत लेट हो गया है, ब्लड के धब्बे पड़ गए, खून का धब्बा पड़ गया, तो फिर आँख का कोई नहीं बचा सकता है। तो उसमें आपके ऊपर है कि आप कितना अपनी आँख का ध्यान रखते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जी जी यानी कि अगर समय रहते अपनी समस्या डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं,
1: जी
0: आप इलाज शुरू करा देते हैं, तो निश्चित है कि आपकी बीमारी का निदान हो सकता है, आपकी
1: हाँ
0: आंखें बच सकती हैं
1: जी
0: और आप दुनिया को आसानी के साथ देख सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो अपनी आंखों का ख्याल हमको खुद रखना
0: जी
1: होगा।
0: जी जी बिल्कुल। समस्या ऐसी है जिसमें कि व्यक्ति को आंखों से ही सारा कुछ पता चलना है,
1: जी
0: अगर इसमें कोई छोटी मोटी कमी हो गई तो फिर वो बहुत बड़ी क्षति हो सकती है शरीर
1: हाँ
0: की, ये दुनिया वीरान हो सकती है।
1: जी
0: इसलिए हमारे श्रोतागण, आप डॉक्टर साहब की बात को ध्यान में रखेंगे और अपनी जांच नियम से समय समय पर कराते रहेंगे। डॉक्टर शिखा यादव, आप हमारे स्टूडियो आई और इतनी अच्छी जानकारी दी आँखों की आम समस्याओं पर। आम व्यक्ति

0: इससे किस प्रकार लाभान्वित हों और किस प्रकार सावधान रहें। आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ
2: हाँ भैया,
1: देखा देखा आज परिवार कल्याण के बाद में जो ना है
2: आंखों की सामायिक बीमारियां हैं उनका निदान है।
1: बिल्कुल भैया,
2: डॉक्टर शिखा से विजय नारायण जी बात किए रहे,
1: बड़ा बहुत बढ़िया भैया। देखा इतना फरिया के बताएं जो ना है कि किसान भैया रहने का ध्यान दें ताकि कोनो तरह से बीमारी आंख के ना हो पावे। देखा भैया, हम कहे कि जो ना है एक लोकगीत और सुनवाए के मन रहा अपने पंच भैया रन के।
2: अच्छा अच्छा
1: तो मानिकचंद पटेल के जो ना है देखा गावा एक खेमटा लोकगीत है, अब आप पंच भैया रन के सुनवा दिन जाए तो फिर बात बत कही कीन जाए।
2: सुनवा दे भैया।

0: हाँ
1: हाँ
0: भैया,
1: भैया
0: देखा
1: देखो,
0: मानिक चंद पटेल के जो ना है गावा खेमटा
1: सुना
0: लोकगीत कितना बढ़िया रहा।
1: मानिक रहा भैया, सुन के मन प्रसन्न हुआ।
0: बिल्कुल भैया, देखा हम लोग आज बात करें कि जो ना है बाग के देखभाल के बारे में भी, और हम लोग अपने भी
1: परंपरागत
0: किसान
1: खेती
0: भैया
1: वाली।
0: जो ना है अपने आँख के स्वास्थ्य के भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल
0: लेकिन देखा एक के साथ साथ देखा हमारे सबके जो ना है जीवन के एक अभिन्न हिस्सा है भैया, हमारे पशु लोग हैं जो
1: बिल्कुल
0: ना है,
1: भैया।
0: तो उन्हों के भैया देखा देखभाल के बहुत विशेष ज़रूरत बटे, और एक गर्मी में तो भैया देखा तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत की है। तो हम तो कहा भैया जौन भी किसान भैया हरेन अपने पशु के पाले हैं रखे हैं, वो ये गर्मी में विशेष रूप से ध्यान दें कि ना उनका जो छाया है, जो
1: हाँ
0: उनके जो गौशाला है
1: बिल्कुल,
0: पशुशाला है, ओपे जो ना टीन अगर
1: छाया
0: है तो ओपे पुआल डाल दें, ताकि जो ना धूप से सीधे ओके गर्मी ना।
1: कहे से भैया, देखा पशु बेजुबान होते ना,
0: बिल्कुल भैया
1: उनके
0: बिल्कुल
1: दुख दर्द हमका तो का समझे पड़ी भैया, तो उनका समय से चारा पानी दें,
0: बिल्कुल भैया,
1: छाया में बांधे भैया।
0: ताज़ा पानी पिलावाएं और चारा भी जो ना हरा ता चारा दें,
1: सुबह शाम खुली हवा में बांध
0: और
1: दें, खुद
0: कोशिश
1: दें।
0: करें भैया कि जो ना है उनका ठंडी जगह पे ही रखें, जहाँ पे यहाँ है गौशाला में या जहाँ पे भी पानी के छिड़काव 2-3 बार कर दें, ताकि थोड़ा
1: बिल्कुल
0: सा ठंडा बनी रहे। और छोट लड़ुआ हैं तो उनका भैया पंखा उनखा सामने रखें जो ना है, कूलर वूलर व्यवस्था हो जाए तो हो।
1: हाँ, सुबह शाम में एक बार जरूर नहला दें उनका, ताकि
0: बिल्कुल
1: उनके
0: भैया,
1: शरीर के तापमान बना रहे
0: और जो
1: भैया।
0: उनका रखे वाली जगह है उसमें ऐसा ना हो कि जगह छोटी हो, जानवर ज़्यादा हो, तो वही औसत के अनुपात में ही गर्मी में रखें। लेकिन
1: बिल्कुल
0: पशुवन
1: बिल्कुल।
0: के कहा है कि देखा हमसे तो उसे ज़्यादा जो ना गर्मी लागत है, तो एक ध्यान रखें। देखा एक साथ साथ भैया देखा अपने पंचायती में हम लोग हर बार कही थी कि किसान भैया की भी अगर कोनो इच्छा होए, कुछ विशेष जानकारी उनका चाहत होए, या
1: अच्छा
0: हमारे कार्यक्रम कैसा लगा है,
1: हाँ
0: तो ओपे कुछ प्रतिक्रिया दे चाहत होए, अपन
1: बिल्कुल।
0: बात हमने तक पहुँचावे चाहत होए, तो ओके लिए अपने आकाशवाणी के जो ना एक तो फेसबुक के माध्यम से
1: बिल्कुल,
0: ओपे अपन विचार अपन कमेंट भेज सकत हैं।
1: और एक
0: साथ ही
1: व्हाट्सएप।
0: साथ भैया देखा व्हाट्सएप नंबर भी जो ना है अपने आकाशवाणी का है, तो हम कहा रघु भैया पहले नंबर बता दे कि जो किसान भैया ने नोट कर
1: हाँ
0: लें।
1: भैया, अरे हमारा व्हाट्सएप नंबर बात है, जिसमें भैया अरे अपन प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो नंबर नोट कर लें भैया, अरे 800-4926-250। भैया अरे
0: बिल्कुल
1: नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 800-4926-250।
0: बिल्कुल भैया, देखा पंच भैया से विदा ले के समय हो गया है, तो पंचों
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

0: उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
1: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
2: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
4: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
0: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में

0: छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
1: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
0: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम, इसमें लीजिए सुनिए प्रवीण शेखर की वार्ता, डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियां।
3: वार्ता की शुरुआत में एक घटना साझा करने का जी चाहता है। बात उन दिनों की है जब वियतनाम युद्ध चल रहा था।

0: Chuchu no tía.
1: वार्ता की शुरुआत में एक घटना साझा करने का जी चाहता है। बात उन दिनों की है जब वियतनाम युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन के लोग खुद को अलग थलग, उदासीन, कटे हुए अनुभव कर रहे थे। उन दिनों विश्वख्यात नाट्य निर्देशक पीटर ब्रुक, जो बीती शताब्दी के 90वें दशक में महाभारत नाटक के लिए दुनिया भर में बहुचर्चित रहे हैं, उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को वियतनाम पर आधारित एक नाटक दिखाया, किसी उद्देश्य को जाहिर किए और बिना किसी उत्तेजना के एकदम खामोशी से। नाटक के अंत में एक दृश्य था जिसमें एक पात्र सेंटर स्टेज पर आता है और एक बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स में से अचानक ढेरों रंग बिरंगी तितलियां निकल निकल कर पूरे प्रेक्षागृह में इधर उधर उड़ने लगती हैं। पूरे प्रेक्षागृह में दर्शकों की खुशी और हंसी तैर जाती है। तभी अचानक वो अभिनेता एक हाथ में एक तितली के पंखों को पकड़कर खड़ा हो जाता है और दूसरे हाथ से जेब में रखा लाइटर निकालता है। वो जलता हुआ लाइटर तितली के नज़दीक ले जाने लगता है। दर्शक खामोश हो जाते हैं, ज़रा भी आवाज़ नहीं। लोग चुपचाप तितली को जलता हुआ देखकर हतप्रभ रह जाते हैं और धीरे धीरे प्रेक्षागृह से बाहर निकल जाते हैं, मन पर न जाने कितना बोझ और अवसाद लिए। ये दृश्य कई प्रदर्शनों में दोहराया जाता रहा, लेकिन एक दिन अचानक वहाँ विचित्र घटना घटी। ये दृश्य चल ही रहा था कि दर्शकों के बीच से एक महिला तेजी से निकली और तितली को मंच पर खड़े अभिनेता के हाथों से मुक्त कराते हुए बोली, आपने देखा, खराब से खराब हालात में भी कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता है। थिएटर की भाषा और समाज की संवेदनशीलता को लेकर इस घटना के कई मायने हैं, लेकिन उस महिला का लाइटर की आग से तितली को बचा लेने की पहल क्या रोशनी की एक लकीर खींच देना नहीं है? बेरुखे और बेजान होते जा रहे समय में रंगमंच ऐसे ही जीवंत और धड़कती हुई उम्मीद देता है। यही रंगमंच की सजीवता, जीवंतता और शक्ति है। रंगमंच में ऐसा क्या है जो इस अनूठे कला माध्यम को दूसरे कला अनुशासन या माध्यमों से अलग करता है? थिएटर या रंगमंच एक करियर, टेलीविज़न या सिनेमा की ओर जाने का एक रास्ता, सीढ़ी, किसी भी तरह स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आत्मविस्तार, अपनी खोज, खुद को समृद्ध करने और मनुष्य का मनुष्य से जीवंत संवाद कायम करने की इच्छाएँ किसी इंसान में कभी नहीं मरती। रंगमंच में ये विस्तार और तलाश संभव है। ये इस मीडियम की ब्रांडिंग या प्रोपोगंडा या प्रचार नहीं है। किसी को एक्टर या डायरेक्टर बनाने की कोशिश भी नहीं है, बल्कि इस मीडियम को लेकर जिस संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन या अनुभूति और समानुभूति की ज़रूरत है और होनी चाहिए, उसकी ओर एक इशारा ही है। रंगमंच या नाटकों की सृजनात्मक दुनिया किसी भी व्यक्ति को मॉडर्न होने का अवसर देता है और कंप्लीट होने के रास्ते पर ले जाता है। रंगमंच और इंसान के संबंध, कला माध्यमों से मानवीय रिश्तों के इतिहास और सभ्यता के इतिहास में अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये बहुत साफ ढंग से दिखता है कि आदिम युग से ही अभिव्यक्ति के लिए किसी घटना या आप बीती को अपने साथियों या अपने लोगों के बीच बताने या दिखाने के लिए मनुष्य देह भाषा का प्रयोग करता रहा है। दरअसल यही रंगमंच की शुरुआत है। मानवीय संवाद और अभिव्यक्ति के लिए जब भी कोई नई पहल हुई है, कोई नई शुरुआत हुई है या कोई नया आविष्कार हुआ है, तब तब ये बहस और विमर्श होता रहा है कि रंगमंच का भविष्य कैसा होगा या किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी। जैसे आजकल ये बहस कि डिजिटल युग में रंगमंच के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं। अपने अस्तित्व को लेकर रंगमंच ऐसे सवालों से मुठभेड़ करता रहा है। जब 19वीं शताब्दी में दुनिया भर के साहित्य में बहुत कुछ श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम लिखा जा रहा था, तब भी ये सवाल आया था कि अब लोग थिएटर से विमुख हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 20वीं शताब्दी में, जो सिनेमा की शताब्दी कही जाती है, जब दुनिया भर में सिनेमा विकसित हुआ और सुंदर, श्रेष्ठ कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्थापित हो गया, तब भी ये बात हुई थी

कि रंगमंच का भविष्य अब अंधेरे में है। फिर रेडियो और टेलीविज़न के लोकप्रिय होने के साथ और इन माध्यमों के वर्चस्व के बढ़ने के साथ भी ये बात आई कि लोग अब रंगमंच से कट जाएंगे। अब सूचना और डिजिटल माध्यमों की क्रांति की इस 21वीं शताब्दी में भी ये बहस फिर शुरू हुई है, विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद। सामान्य धारणा है कि डिजिटल दौर में रंगमंच कई तरह की चुनौतियों से घिरा है, जहां तकनीकी प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक ह्रास भी जुड़ गया है। रंगमंच अब दर्शकों की बदलती आदतों से जूझ रहा है। दर्शक केंद्रित चुनौतियां डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे OTT यानी ऑन द टॉप, शॉर्ट वीडियो क्लिपिंग्स या ऐप्स के दर्शकों को त्वरित व्यक्तिगत मनोरंजन की ओर खींच लिया है। रंगमंच का लाइव सामूहिक अनुभव अब प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि दर्शक घर बैठे एक अलग प्रकार के मनोरंजन की सामग्री पा सकते हैं। लेकिन स्क्रीन पर भाव भंगिमाओं का ह्रास और इंटरैक्टिविटी की कमी रंगमंच की मूल आत्मा को कमजोर करती है। पारंपरिक मंचों का रखरखाव महंगा है, जबकि डिजिटल कंटेंट उत्पादन सस्ता एवं स्केलेबल लग सकता है। रंगमंच का सौंदर्य, जीवंत ऊर्जा, दर्शक अभिनेता और नाटकीय तनाव में निहित है, जो डिजिटल माध्यम में दो आयामी हो जाता है। नाट्य परंपरा में सामाजिक राजनीतिक विमर्श अब OTT के सतही नैरेटिव से प्रतिस्थापित हो रहा है। ये डिजिटल सामान्यीकरण रंगमंच की आलोचनात्मक गहराई को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि एल्गोरिदम आधारित आरोपित और अनचाही चीज़ें विविधता को सीमित कर देती हैं। कई देशों में थिएटर इन द डिजिटल एज, ऑडियंस व्यूइंग एक्सपीरियंसेस विषय पर शोध हुए। ऐसे ही कई तरह के प्रामाणिक मीडिया शोध और वास्तविक उदाहरण ये साबित करते हैं कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के बावजूद थिएटर या रंगमंच या स्टेज ड्रामा अपनी शक्ति, सार और सामाजिक भूमिका बनाए हुए है। थिएटर की जीवंतता और डिजिटल युग के बावजूद दर्शकों की पसंद में डिजिटल प्लेटफॉर्म सहायक हो सकते हैं। उनका खतरा मूल रूप से थिएटर को खत्म नहीं कर रहा है। डिजिटल मीडिया और तकनीकी बदलावों के बावजूद लाइव थिएटर अभी भी दर्शकों को खींचता है, क्योंकि लोग थिएटर में असीमित मानव संपर्क, भावनात्मक जुड़ाव और भागीदारी चाहते हैं। इस शोध के लिए सैकड़ों रंगमंच प्रेमियों ने कहा कि वो डिजिटल मंच पर मुफ्त में नाटक देखने के बजाय लाइव थिएटर जाने को प्राथमिकता देते हैं। यानी डिजिटल मीडिया थिएटर को समाप्त नहीं कर पाया। लोग अनुभव के लिए स्टेज पर लौट रहे हैं, अच्छे सौंदर्य से भरे सामाजिक और मानवीय भाव और प्रतिबद्धताओं को लेकर रचे गए नाटकों में दर्शकों की भीड़ से प्रदर्शन की शक्ति दर्शाता और आश्वस्त करता है। द रोल ऑफ थिएटर फॉर डेवलपमेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड अध्ययन में ये साबित हुआ कि डिजिटल दुनिया में थिएटर का महत्व और भी बढ़ता है, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है, भावनात्मक जागरूकता को दर्शाता है और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाता है। यहाँ तकनीक थिएटर का सहयोगी है, खत्म करने वाला नहीं। डिजिटल मीडिया रंगमंच का विकल्प प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि उसकी पहुँच और प्रभाव का विस्तार करता है। बीते कुछ वर्षों में लगातार हिंदी, बांग्ला, मराठी, मणिपुरी, कन्नड़, असमिया, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में और उनके नाटकों का हाउसफुल प्रदर्शन इस बात की गवाही देते हैं कि देश के कई शहरों में हो रहे भारत रंग महोत्सव के नाटकों में आ रही दर्शकों की बड़ी संख्या ये साबित करते हैं कि डिजिटल माध्यम पर हुए प्रचार का ये सुखद परिणाम है। मराठी नाटक संगीत देवबाभाली ने डिजिटल चर्चा के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई और उसके बाद भी स्टेज शो हाउसफुल रहे। इस मराठी नाटक पर एक छोटा सा ऑनलाइन इंटरव्यू वायरल हुआ, रील बनी, क्लिप चली, लोगों ने जिज्ञासा के साथ लिखा, क्या ये नाटक अभी भी मंच पर होता है? अगले महीने उसके लगातार हाउसफुल शोज। डिजिटल माध्यम पर उस नाटक की चर्चा खतरा नहीं बनी, नाटक तक पहुँचने का रास्ता बनी। व्हाई थिएटर स्टिल मैटर्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया जैसे शोध बताते हैं कि रंगमंच में मौजूद रियल टाइम मानव संपर्क, साझा भावनाएं, तालियां और दर्शकों का

समूहात्मक अनुभव डिजिटल स्क्रीन पर नहीं मिल सकता। डिजिटल सोशल मीडिया सूचना देता है, रंगमंच अनुभव देता है। ये फर्क बहुत बड़ा है। रंगमंच की जीवंत चेतना को जीवित रखने के लिए 30 से ज्यादा देशों में बेलारूस वर्ल्ड वाइड रीडिंग्स प्रोजेक्ट का शोध हुआ। कोविड महामारी के दिनों में शहर और गांव सूने थे। मोबाइल फोन की स्क्रीन रील्स शॉर्ट्स लाइव सब कुछ भरा हुआ था। उसी समय एक ऑनलाइन जूम रीडिंग हुई। दुनिया भर के कलाकार जुड़े, हजारों लोगों ने स्क्रीन पर देखा। दिलचस्प बात यह थी कि हर प्रस्तुति के बाद चैट में एक ही बात बार बार लिखी जाती थी, जब थिएटर खुले इसे लाइव देखना है। यानी स्क्रीन ने थिएटर को हटाया नहीं, उसके लिए भूख पैदा की। एक विश्वविद्यालय ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक डिजिटल थिएटर प्रोजेक्ट शुरू किया, द मैनिक मोनोलॉग्स। लोगों ने मोबाइल पर देखा, रोए, कमेंट किया, शेयर किया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वही मोनोलॉग मंच पर हुआ, दर्शकों की आंखें स्क्रीन से ज़्यादा नम थीं। लोगों का कहना था कि वीडियो ने उन्हें जानकारी दी, लेकिन मंच ने उन्हें बदल दिया। नाट्यशास्त्र के संदर्भ में रंगमंच की रस निष्पत्ति एक अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अवधारणा है। नाट्यशास्त्र के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। पर यह निष्पत्ति केवल दर्शक तक सीमित नहीं है। अभिनेता अपने भीतर के स्थायी भाव को शरीर यानी आंगिक, वाणी यानी वाचिक, मनोदशा यानी सात्विक के माध्यम से मंच पर संप्रेषित करता है। जब दर्शक उस भाव से तादात्म्य स्थापित करता है, तब उसके भीतर रस जागृत होता है और दर्शक की मौन तन्मयता, सांस का क्षण भर रुक जाना, हंसी, आंसू, सिहरन या पूर्ण निस्तब्धता, ये सब अभिनेता तक अदृश्य संकेतों के रूप में लौटते हैं। इससे अभिनेता का भाव और अधिक तीव्र, सघन और सजीव हो जाता है। नाट्यशास्त्र भले ही दर्शक को रसास्वादक मानता है, लेकिन सहृदय की अवधारणा बताती है कि रस तभी पूर्ण होता है जब दोनों पक्ष संवेदनशील हों। अभिनेता का भाव साधन और दर्शक की रस ग्रहण क्षमता एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करती रहती है। इसी रस प्रवाह के कारण रंगमंच कभी रिकॉर्डेड नहीं हो सकता। इसकी हर प्रस्तुति अद्वितीय होती है। वही नाटक, वही अभिनेता, पर हर शाम नया अनुभव। अभिनेता और दर्शक की सांस एक समय में चलती है। गलती, जोखिम, जीवंतता साथ होती है। ये अनुभव रिकॉर्ड नहीं, घटित होता है। यही कारण है कि डिजिटल माध्यम भाव पहुंचा सकता है, पर रस का जीवंत संवाद केवल रंगमंच में संभव है। कह सकते हैं कि स्क्रीन ध्यान खींचती है, मंच आत्मा को। भरत मुनि का ये मानना रहा है कि संसार की कोई ऐसी कला, ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग या कर्म नहीं है जो नाट्य में अंग न बन सके। रंगमंच के अभ्यासी या निरंतरता और गंभीरता से साधना करने वाले जानते हैं कि किस तरह कला के सारे माध्यम, विज्ञान के सारे अंग, साहित्य और संस्कृति के सभी रूप रंगमंच में शामिल हैं। रंगमंच ने विज्ञान, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी आदि को अपने में समाहित कर लिया है और सिनेमा मल्टीमीडिया को अपनाकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। इसी प्रकार डिजिटल व सोशल मीडिया को एकीकृत कर थिएटर ने आधुनिक दर्शकों को जोड़ा है या जोड़ सकता है, या पहले भी जोड़ा जा चुका है। डिजिटल मीडिया के एकीकरण से थिएटर डिजिटल तकनीकों जैसे प्रोजेक्शन, मोशन ट्रैकिंग, वीडियो मैपिंग, इंटरैक्टिव इंटरफेस को अपनाकर इमर्सिव अनुभव प्रदान करता है। यानी आप बाहर से उसे देख नहीं रहे हैं, बल्कि उसके अंदर मौजूद हैं। सोशल मीडिया थिएटर के लिए प्रचार, दर्शकों की भागीदारी, नई अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुका है। जहाँ प्रदर्शनों के क्लिप शेयर कर व्यापक पहुंच बनाई जाती है, परंपरागत थिएटर वाले नाट्यशास्त्र और आधुनिक रंगमंच की सीखों के साथ सोशल मीडिया को अपनाकर दर्शकों से गहरा जुड़ाव संभव बनाते हैं और बिना सौंदर्य भंग किए। ये एकीकरण थिएटर की मूल प्रकृति और प्रयोग को मजबूत करता है। एक बात निश्चित है कि डिजिटल माध्यम दर्शक बनाता है, रंगमंच अनुभव देता है।

हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रवीण शेखर की वार्ता, डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियाँ। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं रमा सेन। लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए जयदेव शर्मा, कमल का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रमा सेन के स्वर में गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शंभुनाथ ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रयागराज।
2: क्वालिटी एजुकेशन विद एकेडमिक एक्सीलेंस फॉर अ बेटर करियर मींस शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द बेस्ट इन प्रयागराज।
3: वी आर प्रोवाइडिंग मोर देन 90% प्लेसमेंट इन मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर इयर्स,
2: ऑफरिंग इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, BBA, BCA, BTC एंड LLB कोर्सेज। विजिट SIET.in।

0: Shambhunath Group of Institutions curates your career with engineering, medical, management, BBA, BCA, BTC and LLB courses. Visit SIET.in.
1: Shambhunath Group of Institutions, shaping the future.
2: किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी संगठन के लिए 90 बरस की यात्रा पूरी करना आसान नहीं होता है। बस 10 बरस हैं, हम 100 बरस पूरे कर लेंगे और आप सब साक्षी होंगे उस 100 बरस के भी। इसी आशा के साथ हम ये दीप प्रज्वलन कर रहे हैं कि आने वाले 10 वर्ष हम और बेहतर कर सकें और उजाला फैला सकें, ताकि आप सब बड़े गर्व के साथ और गौरव के साथ उस 100 बरस की यात्रा में हमारे साथ हों। बहुत बहुत आभार आदरणीय न्यायमूर्तिगण, आपके सानिध्य में हम सब समृद्ध हुए हैं। अब हम अपने ईष्ट को याद करेंगे गणेश वंदना के साथ। गणेश हमारे ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना करके हम हर अपने शुभ कार्य की शुरुआत करते आए हैं। तो आज शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की खुशी पांडे प्रस्तुत कर रही हैं गणेश वंदना। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और गणेश वंदना प्रस्तुत करें।
3: गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे, भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय धुरपत गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे।

0: वंदना के बाद जरूरी है कि हम अपने अतिथियों का और आए हुए लोगों का स्वागत करें, और स्वागत वाचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी प्रयागराज नेहा गुप्ता जी को।
1: नमस्कार सभी को। आज का दिन बहुत ही सुंदर है। आज के मुख्य

0: अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी जी, सम्मानित अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा जी, सम्मानित अतिथि माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह जी और हमारे विशिष्ट अतिथि शंभुनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर डॉक्टर आर के सिंह जी और हमारे जो को स्पॉन्सर हैं SBI कैन शाखा मुख्य प्रबंधक अमित मिश्रा जी, गरिमा जी, क्लस्टर प्रमुख महोदय श्री के गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित अधिकारी कर्मचारी और प्यारे श्रोताओं, पैनलिस्ट और मीडिया बंधुओं के लोग, 8 जून 1936 को 90 वर्ष आकाशवाणी इस संस्था को हो जाएंगे। ज़रा देखें तो हमारी संस्था अगले 10 साल में 1 शताब्दी पूर्ण कर लेगी। मुझे खुशी होती है कि लोगों के जहन में और दिल में हमारी संस्था ने जिस तरह से एक इमेज बनाई है वो ताजुब होता है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक व्यक्ति ने नहीं किया है। देश के कोने कोने में आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े हुए ब्रॉडकास्टर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत ऐसी है कि दिनों दिन ये संस्था समृद्ध होती जा रही है। ज़रा सोचिए कि 8 जून 1936 को आखिर क्या हुआ होगा जो हम लोग इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। उस दिन तत्कालीन जो वॉइसराय थे, लॉर्ड वॉइसराय लिनलिथगो थे और उस समय जो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के सर लियोनार्ड फिल्डन महानिदेशक थे, उनका आना हुआ था इंग्लैंड से और उन्होंने पता नहीं कैसे, शायद गांधी जी ने, पटेल साहब ने और जो भी तत्कालीन हमारे राजनेतागण दार्शनिक रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं भारतीयता की छाप वो लोग छोड़ रहे थे। तभी सर लियोनार्ड फिल्डन के दिमाग में आया कि भाई भारतीयों की ये संस्था है और ब्रॉडकास्टिंग नाम ठीक नहीं लग रहा, कुछ और होना चाहिए। 8 जून को एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन था और जब आयोजन समापन की ओर था तो वॉइसराय को साइड में ले जाते हैं और कहते हैं कि सर क्यों नहीं हम कुछ भारतीयों के लिए करें। वो भारतीय हो चुके थे और उसी समय उन्होंने कहा, यस यू आर राइट मिस्टर लिनलिथगो, लियोनार्ड फिल्डन, उन्होंने कहा कि चलिए ऑल इंडिया रखते हैं, आगे रेडियो। वहीं से जन्म होता है एक लोगों का, एक मैंडेट का और हमारी संस्था का। इस संस्था में किसानों की जान बसती है, इस संस्था में हर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये संस्था बनी हुई है, आगे तरक्की कर रही है, ऐसी है हमारे आकाशवाणी।
1: दरअसल आकाशवाणी ने अपनी इस यात्रा में हमें आवाज देने का काम किया। आकाशवाणी प्रयागराज का तो ये सौभाग्य रहा कि यहाँ पर अगर सुमित्रानंदन पंत जैसे, फिराक गोरखपुरी जैसे, महादेवी वर्मा, एक से बढ़कर एक साहित्यकार यहाँ आते रहे। तो बिस्मिल्ला खान ने अपनी शहनाई यहाँ आकर बजाई, गिरजा देवी ने अपना गायन यहाँ किया। अद्भुत है प्रयागराज आकाशवाणी। और आप अगर देखें, जो लोग पुराने होंगे उन्हें जो यादें आती होंगी, जो आवाज़ें हमें बुलाती रही हैं, दरअसल रेडियो की दुनिया है ही ऐसी। हम शब्दों से शब्द चित्र खींचने में माहिर होते हैं, हम बताते हैं दुनिया को, देखो शब्दों में भी ताकत है, हर एक शब्द की अपनी ध्वनि तो होती है लेकिन हर एक शब्द के पीछे कोई चित्र भी छिपा होता है। हम पैदा करते हैं दिमाग में उस चित्र को, यही है आवाज़ की दुनिया जिसे हम निभाते चले आए हैं और आगे तक निभाते चले आएंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा जी को कि 2 शब्द आशीर्वचन के जरूर कहें।
2: नमस्कार, यह आकाशवाणी है, यह एक वाक्य नहीं बल्कि पिछले 90 वर्षों से भारत की धड़कन है। आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और खुशी का क्षण है कि आकाशवाणी ने राष्ट्र और विश्व तक भारत की आवाज़ पहुंचाने के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह केवल एक संस्था का उत्सव नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक चेतना की 90 वर्षों की अद्भुत यात्रा का उत्सव है। मुझे याद है कैसे घर के बड़े बुजुर्ग सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ समाचार सुनते थे, या रात को सर्वभाषा कवि सम्मेलन हो या विविध भारती के गानों का आनंद लेते थे। जब संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे तब रेडियो ही लोगों को सबसे विश्वसनीय साथी हुआ करता था। गांवों की चौपालों से लेकर शहरों के घरों तक आकाशवाणी की मधुर आवाज़ लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई थी।

0: आकाशवाणी ने हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही नहीं, कितने ही लोग अपने दफ्तर जाने या रात के सोने का समय समाचार के वक्त या हवा महल के खत्म होने का अपना कोऑर्डिनेशन करते थे। 1936 से लेकर आज तक आकाशवाणी ने सिर्फ समाचार या मनोरंजन ही नहीं दिया, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। देश के विकास में हर पल देश का साथ निभाया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य पर चलते हुए यह संस्था सबसे विश्वसनीय माध्यम बनी हुई है। ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद से उसके 90वें स्थापना दिवस पर बोलने का निमंत्रण पाकर मैं सचमुच आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। वास्तव में मैं ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद के गीतों के साथ पला बड़ा हूँ। हम इसके प्यारे कार्यक्रमों को बेसब्री से इंतज़ार करते थे। रेडियो सिलोन, विविध भारती, आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद के विज्ञापनों के गीत कौन भूल सकता है। एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन के विज्ञापन के साथ ही हवा महल शुरू होता था। मुझे आज भी याद है कि मुझे ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद के युववाणी कार्यक्रम में अपनी एक कविता सुनाने का निमंत्रण मिला था और उसके बाद मुझे एक चेक भी मिला था। मुझे कविता का शीर्षक द कुकू याद है। उस समय मैं बहुत रोमांचित था कि मेरी आवाज़ पूरे दुनिया तक पहुंच गई थी। मेरी माँ भी अक्सर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में नए नए व्यंजनों को बनाने की विधि बताया करती थी। आज भी यह आकाशवाणी है। शब्द सुनते ही हमारे मन में विश्वास, अपनापन और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। तकनीक बदल गई है, माध्यम बदल गए हैं, लेकिन आकाशवाणी की विश्वसनीयता और गरिमा आज भी वैसे ही बनी हुई है। अंत में मैं आकाशवाणी के सभी कर्मियों, उद्घोषकों और कलाकारों को हृदय से बधाई देता हूँ जिन्होंने इस संस्था को बुलंदियों तक पहुँचाया है। ऑल इंडिया रेडियो दिन प्रतिदिन तरक्की करे, आगे की यात्रा मंगलमय हो। आप सभी को एक बार पुनः आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत आभार आदरणीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा जी।
2: Quality education with academic excellence for a better career means Shambhunath Group of Institutions, the best in Prayagraj.
3: We are providing more than 90% placement in multinational companies for years.
2: Offering engineering, medical, management, BBA, BCA, BTC and LLB courses. Visit SIET.in.
4: Shambhunath Group of Institutions, shaping the future.
2: Shambhunath Group of Institutions curates your career with engineering, medical, management, BBA, BCA, BTC and LLB courses. Visit SIET.in.
4: Shambhunath Group of Institutions, shaping the future.
5: 21 years of excellence ke saath Shambhunath Institute of Engineering and Technology SIET mein BTech, MTech, MBA ke liye admission prarambh hai.
6: For more info visit our website SIET.in.
1: Vastav mein hum sab ke paas रेडियो से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियां हैं। उन कहानियों में हम अपने अपने हिस्से का सुख ढूंढ लेते हैं और अपने आप को किसी न किसी आवाज़ से या किसी न किसी कार्यक्रम से जोड़ लेते हैं। यही ताकत है उस आवाज़ की जो 90 साल से गूंज रही है। ऐसी ही तरन्नुम को, ऐसी ही हम रचना को निरंतरता देते हुए आमंत्रित कर रहे हैं कार्यक्रम अधिशासी अभिनव प्रज्ञ पांडे जी को कि वे आए कविता पाठ करें।
7: 90 वर्ष का होना वास्तव में बहुत कठिन होता है, क्योंकि 90 वर्ष का होने के लिए आपको चाहिए होता है अथक परिश्रम, उससे ज़्यादा अनुशासन, उससे ज़्यादा विश्वसनीयता। बहुत बड़ी बात होता है 90 वर्ष तक लगातार विश्वसनीय होना। बहुत मुश्किल होता है अपनी विश्वसनीयता को तब बनाए रखना जब आपके कंपटीशन में ऐसे लोग हों जो एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति उन्होंने विकसित कर दी हो कि जहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी चीज़ आज फल फूल रही है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी लोक प्रसारक के तौर पर इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोक प्रसारक का जो अर्थ है उसको परिभाषित करना आज के दौर में, राजस्व अर्जन के इस दौर में जब सूचना का बहुत आधिक्य है, सबके पास मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों के पास कोई भी सूचना क्षणों में पहुँच जाती है। ये सब मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि खासकर जो जेन जीज़ और जेन अल्फाज पीछे बैठे हुए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि लीगेसी कब बनती है और कैसे बनती है। लोग कहते हैं आकाशवाणी के लोग बोलते बहुत अच्छा है, मगर सच बात तो ये है कि आकाशवाणी के लोग सुनते बहुत अच्छा है। उनको पता होता है एक अच्छा वक्ता होने के लिए

0: एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों की साधना बहुत कठिन होती है, बहुत आसान नहीं होती है। सबसे तेज़ होना ज़रूरी नहीं है, सबसे विश्वसनीय होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस दौर में आपने अगर अपनी विश्वसनीयता कायम रख ले गए आप तो यकीन मानिए 90 साल के आप 190 साल 290 साल तक जिएंगे, धीरे चलेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देंगे। क्यों ब्रेक करना है? हम जोड़ने का काम करते आए हैं, करते रहेंगे। खबरें पहुंचेंगी, अपने समय से पहुंचेंगी, लेकिन सही पहुंचेंगी, ऑथेंटिक पहुंचेंगी, प्रामाणिक पहुंचेंगी। छोटी सी कविता लिखी थी कभी आकाशवाणी के लिए, रेडियो के लिए, वही सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। मेड़ों पगडंडियों खेत खलिहानों में, मेड़ों पगडंडियों खेत खलिहानों में, लोकगीतों के सुर में लरसती हूँ मैं। मेड़ों पगडंडियों खेत खलिहानों में, लोकगीतों के सुर में लरसती हूँ मैं। झूमती हूँ मैं महुआरी अमराई में, झूमती हूँ मैं महुआरी अमराई में, धान की बालियों संग थिरकती हूँ मैं। बिरवों की नोक पर ओस की बूंद सी, बिरवों की नोक पर ओस की बूंद सी, जेठ सी ठेठ गर्मी में सजती हूँ मैं। पहली बारिश में भीगे हुए खेत की, पहली बारिश में भीगे हुए खेत की, लेके सोंधाई हर घर पहुँचती हूँ मैं। आपकी अपनी आकाशवाणी हूँ मैं, नब्ज़ और धड़कनों को समझती हूँ मैं। भागते शहरों की एक ठहरी हवा, भागते शहरों की एक ठहरी हवा, गांव भूले हुए शहरियों की दवा। भागते शहरों की एक ठहरी हवा, गांव भूले हुए शहरियों की दवा, गिल्ली डंडों और खोखों से थककर पड़ा, चूल्हे की आंच से तपकर उतरा तवा। इमलियों महुओं बेरों को चुनते हुए भर के डलिया कोई राह तकती हूँ मैं। आपकी अपनी आकाशवाणी हूँ मैं, नब्ज और धड़कनों को समझती हूँ मैं। सरहदों पर खड़े जवान के मित्र सी, सरहदों पर जो हमारे सिपाही होते हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी अपनी ड्यूटी देते हैं, नकारात्मक तापमान में -9, -10 डिग्री सेल्सियस में भी अपनी ड्यूटी देते हैं, और हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं कि जब वो वहाँ से सरहदों से अपनी ड्यूटी से लौट करके कैंप्स में आएँ तो आवाज़ों के माध्यम से ही सही कहीं उनको अपने घर का कोई एक ऐसा जुड़ाव महसूस हो जिससे उनको ये ना लगे कि वो एकदम अलग थलग हमसे पड़ गए हैं। सरहदों पर खड़े जवान के मित्र सी, खेत की मेड़ के सोंधे से इत्र सी। सरहदों पर खड़े जवान के मित्र सी, खेत की मेड़ के सोंधे से इत्र सी, झुर्री वाले हाथों में लहसुन के तेल सी। माँ के हाथ झुर्रीदार हुआ करते थे, शायद याद आते होंगे, आते ही होंगे। झुर्री वाले हाथों में लहसुन के तेल सी, हम सफ़र आपकी गीतों की रेल सी। सुर के मरहम को दर्दों पे मलती हूँ मैं, आपकी अपनी आकाशवाणी हूँ मैं, नब्ज़ और धड़कनों को समझती हूँ मैं। अंतिम पैराग्राफ है कि बचपना बच्चों का उनका अल्हड़पना, जिंदगी की समझ शब्दों की साधना। बचपना बच्चों का उनका अल्हड़पना, जिंदगी की समझ शब्दों की साधना। कानों पे सज नज़र को ज़रा थाम के, कानों पे सज नज़र को ज़रा थाम के, अपनी आवाज़ों से जो दिखाए जहां। दादी के चश्मे की वो कमानी हूँ मैं, आपकी अपनी आकाशवाणी हूँ मैं, नब्ज़ और धड़कनों को समझती हूँ मैं, आपकी अपनी आकाशवाणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
1: बहुत बहुत आभार अभिनव जी, बहुत शानदार कविता के लिए। वास्तव में जब कविता पढ़ रहे थे तो याद आ रहा था वो समय था जब हम विद्यार्थियों को ये भी बताया जाता था कि रेडियो सुनो, रेडियो सुनने से तुम्हारे पास शब्दों का जखीरा आ जाएगा। और रेडियो ये काम खूब बखूबी करता रहा। रेडियो हमारी रगों में होता है, बिना रेडियो के हमारा काम नहीं चलता और जीतने का एहसास कराता है हमें हमारा रेडियो। मित्रों, हमारी जो लोक संस्कृति की थाती है वह अद्भुत है। बिना लोक के हमारा रेडियो भी पूरा नहीं होता। लोक गायन में हमारी सामाजिक समरसता है तो विकास की अनकही लय है, और इन लय के साथ हम अपने जीवन की निरंतरता को गढ़ते चले आए हैं। जाहिर है कि हम जब लोक की बात करते हैं तो हमारे बीच में अगर लोक गायक मौजूद हों तो फिर क्या कहना। और हमारे बीच में आज मौजूद हैं बाबूलाल भवरा जी और उनके साथी कलाकार।

बड़ा ही प्यारा और बहुत मन लुभावन, दिल को छू जाने वाला एक कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होता था, जिसको कहते हैं पंचायत घर। जहाँ पंचायत घर से बोले

और एक कार्यक्रम बड़ा प्यारा आता है, जहां पंचायत घर से किसानों का कार्यक्रम, तरह तरह की खेती, तरह तरह की बातें, उसी जगह पर महिलाएं भी हमारी कम नहीं हैं।

प्यारा कार्यक्रम माँ बहनों का और तरह तरह की बातें और उहिम बढ़िया बढ़िया संदेशा कभी को लिखना पड़ा कि अरे निक निक संदेशा दे

निर्गुण भजन सुन के निर्मल हो चोला। अरे बुढ़वा जवान, अरे बुढ़वा जवान सबके, अरे मन

और अंत में कहना है ये बीता 90 साल बेमिसाल मोरे भैया, बीता 90 साल बेमिसाल मोरे भैया, बुढ़वा जवान सुनई लोग यौलू गैया, बुढ़वा जवान सुनई लोग यौलू गैया, अरे मेड़वा पे रेडियो धई, हम गांव के आदमी है ये हमें बहुत अच्छी तरह पता बा, मेड़वा

अंत में एक लाइन जरूर कहूंगा कि धन धन आकाश बाड़ी लावाए से प्रीत हो, ये हम कलाकारों का अनुरोध है। धन धन आकाश बाड़ी लावाए से प्रीत हो, यह बदे कि संझा

0: Admissions open in Shambhunath Research Institute of Medical Sciences and Hospital for ANM GNM BSc Nursing, Diploma in Lab Technician and Diploma in OT Technician.
1: For more info, visit our website siet.in.
2: Shambhunath Group of Institutions curates your career with engineering, medical, management, BBA, BCA, BTC and LLB courses. Visit siet.in.
3: Shambhunath Group of Institutions, shaping the future.
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शंभुनाथ ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रयागराज।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जिसमें हम आपको सुनवा रहे थे आकाशवाणी के 90 साल के पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के संपादित अंश। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। इसमें लीजिए सुनिए सबसे पहले ऋचा शर्मा के स्वर में ये सूफी कलाम।

इस सूफी कलाम के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक

0: शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट

0: सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किउआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the

0: मोदी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमेरिका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलात पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वजीर खारजा ने आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वजीर अजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वजीर अजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वजीर अजम मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा, कलीदी, टेक्नोलॉजी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई की यकीनी फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और आवाम से आवाम के राबते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुजाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और कयाम अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का यादा किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो $20 अरब की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस माहदे पर दस्तखत किए हैं, उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वजीर खारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया, जो तवील मुद्दती मनसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
0: वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकारी मुलाजमतें लोगों के रहन सहन को बेहतर बनाने और इसमें सहूलत पैदा करने के अहम वसीले के तौर पर काम करती हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर अजम ने इस बात को उजागर किया कि दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साझेदारी भी कायम कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके और रोजगार फराहम करना, नीज आलमी सतह पर उन्हें रोशनास कराना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 mm के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 5 लाख गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी

0: रियासत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 201 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुँच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज एफएम

0: रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुँच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं, जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी

0: चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ आईआईटी, कुछ एनआईटी, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार आईआईटी पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कंटिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। एआई के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम एआई के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपोजिट्स होता है, तो ये डिपोजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है, एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद करते हैं। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले।

0: की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा

0: से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अल्गी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
1: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
3: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
0: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मुरांबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड 19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
4: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विशेषता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
5: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे आनंद सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय।

0: था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहें।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
2: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंदनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपुणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्लई की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्लई इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंदनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है।
2: हम प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
3: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।

0: not just on the short term, but on the long term.
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहेर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।